तमन्ना है बर्बाद हो जा भी। आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी इंतकाम से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी भरोसा से हम पेश करते हैं।

वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। गुरुदत्त की आवाज़, यानी क्षमा करना सुनने वालों, लता जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी भरोसा से हमने पेश किए हैं बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले, फ्रॉम द मूवी रूप तेरा मस्ताना। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ये सॉन्ग।

बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी रूप तेरा मस्ताना। झुक गया आसमां इसी फिल्म से हम पेश करते हैं कहाँ चल दिए इधर तो आओ।

0: कहाँ चल दिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कहाँ चल दिए, इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ। फ्रॉम द मूवी झुक गया आसमान से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो रे। फ्रॉम द मूवी तेरे घर के सामने है।

तेरे घर के सामने है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं दिल का भंवर करे पुकार। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया। और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शांता खेमई जी के वास्ते जो हमारे साथी कर्मचारीगण हैं और

पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया। फ्रॉम द मूवी जिंदगी से हमने पेश किए हैं। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया।

एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, फ्रॉम द मूवी बेनाम से हमने पेश किए हैं। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। महेंद्र कपूर जी के साथ में आशा भोसले जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं।

मैं तुझ में हूँ अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे हम तुम्हारे लिए। लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी इंतकाम से।

हमारे लिए तुम हमारे लिए भी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, और गीत का बोल है आज कल में ढल गया। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बेटी बेटे से।

0: आज कल में ढल गया भी आप सुन रहे थे सुनने वालों मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी बेटी बेटे से हमने पेश किए हैं जाने कहाँ गए दो वो दिन फ्रॉम द मूवी मेरा नाम जोकर से आप सुनेंगे
1: बजाओ फिर

जीना यहाँ मरना यहाँ भी आप सुन रहे थे और जाने कहाँ गए वो दिन फ्रॉम द मूवी मेरा नाम जोकर से हमने पेश किए है सुनने वालों। भरी दुनिया में आखिर दिल मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दो बदन से।

भरी दुनिया में आखिर दिल, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। एक बहुत सा सुंदर गीत हम आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी दो बदन से आप सुनेंगे। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा,

रहा गर डिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा। भी आप सुन रहे थे सुनने वालों फ्रॉम द मूवी दो बदन से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफ़ी आपको सुनाने वाले थे। जबकि बारिश का मौसम है तो इस बारिश के मौसम में हम पेश करते हैं ये सॉन्ग आप सभी के वास्ते रफ़ी जी के साथ में। लता जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है।

रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है। ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं एक हंसी ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। कभी खो लिया कभी पा लिया, कभी रो लिया कभी गा लिया। कहीं रहमतों की है बारिशें, कहीं तिश्नगी बेहिसाब है। कहीं छाँव है कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है। कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं मेहरबान बेहिसाब है। ये ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई।

छुप गए सारे नज़ारे और क्या बात हो गई। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहाँ से लाऊं, मैं मांगता हूँ हर सफ़र में साथ तेरा, तू ही बता मेरे हाथों में वो तकदीर, यानी तू ही बता मेरे हाथों में वो लकीर कहाँ से लाऊं। शांता खेमाई जी जो हमारे साथ एक कर्मचारीगण भी है, वो भी ये प्रोग्राम को सुन रही है, तो शांता लीजिए आप ही के नाम ये सॉन्ग हम पेश करते हैं जबकि बारिश का मौसम है।

पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, अभी आप सुन रहे थे मुकेश जी के साथ में, लता जी आपको सुनाने वाले थे। और ये गीत खास करके हम पेश कर रहे थे अपने साथी कर्मचारीगण शांता खेमाई जी के वास्ते। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। सुनने वालों, मिलन है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सावन का महीना, पवन करे शोर।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन

सावन का महीना पवन करे शोर, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मिलन से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, लोफर है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में आज मौसम बड़ा बेईमान है।

अभी आप सुन रहे थे आज मौसम बड़ा बेईमान है, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी लोफर से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, समय हो चला है विज्ञापन का, तो चलिए मिलकर हम सुन

आप ही का हैप्पी स्टेशन 5 ऑन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 7 5 2 8 4 0 या 9 7 3 7 2 0 0 पर आप तार कीजिए। तार का नंबर मैं दोहराता हूँ, अपन अखेंडा में लिख कर रख लीजिए आज नहीं तो कल के लिए। 9 7 5 2 8 4 0 या 9 7 3 7 2 0 0 तार का नंबर है। शान दोस्तों, शान एक गायक है लेकिन शान को एक बैंड का एक ग्रुप भी है, एक म्यूजिक ग्रुप है दोस्तों, और उसी म्यूजिक ग्रुप के आवाज़ में आप म्यूजिक सुनेंगे और शान के गला से आप ये गीत को सुनेंगे।

शान, मिस्टर शान के मीठी आवाज में अभी आपने इस सॉन्ग को सुना। फावन हिंसानी दुबाप चुन है दोस्तों उदित नारायण। उदित नारायण आपको फरमाएंगे कि हवाओं ने ये कहा, और जैसे आप सभी को मालूम है कि हवा भी आवाज़ देता है दोस्तों, लेकिन कहता है हवा तो मुझे मालूम नहीं है। आशा रखता हूँ कि आपको ये गीत सुनकर पता लग जाएगा कि हवा कहता है और हवा ने क्या कहा आपको खुद मालूम हो जाएगा। आप खुद सुनिए दिल और जान से।

उदित नारायण पद्मश्री। उदित नारायण के मीठी आवाज में भी आप ये गीत को सुना। दोस्तों, जानू मेरी जान, तू मेरा मैं तेरा, या तू मेरी मैं तेरा, जाने सारा हॉलैंड। दोस्तों, ये फिल्म शान का सॉन्ग है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन काम किया है परवीन बाबी के साथ। आप सभी को मालूम है कि दोनों में प्यार मोहब्बत था, फिर भी परवीन बाबी जो है वो डिप्रेसिव हो गया था, और जब डिप्रेसिव हुआ तब कई लोग के बारे में अनबन कहा, और कहा कि भारत की सरकार जो है उन्हें भी फॉर द रेक्टर एग्जाम किया था, उसका मूड खराब हो गया था। सो लेकिन उसी समय पे एक पार्टी पे परवीन बाबी ने गया, और अमिताभ बच्चन उसी समय पर सुपरस्टार चुना गया। तो परवीन बाबी से सवाल किया गया कि आप क्या ये बात से सही है कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार चुना गया? तो परवीन बाबी ने कहा, अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार नहीं है, सुपरस्टार का पद अगर देना है तो धर्मेंद्र को दीजिए, देवानंद को दीजिए, ऋषि कपूर वगैरह का नाम लिया तो उसके तीख अमदद प्यार मोहब्बत अब नहीं था, और डिप्रेसिव हो गया था। ठीक से देखा जाए तो उसको आप भी नाराजी नहीं मान सकते, इस बात पर कोलक नहीं ले सकते हैं, वो नहीं जानते थे वो क्या कहते। फिर भी जो इसके दिल में आया वो कहा, जानू मेरी जान। ये दोनों लॉफर्स दोस्तों, परवीन बाबी और साथ ही साथ अमिताभ, दोनों का फिल्म शान का सॉन्ग।

प्रेमी अमिताभ बच्चन परवीन बाबी का फिल्म शान का सॉन्ग अभी आपने प्रोग्राम में सुना। उदित नारायण एक बार फिर प्रोग्राम में, लेकिन उदित नारायण के साथ रहेगा विनोद राठौर और साथ ही साथ अलका याग्निक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक पर। और ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा है। दोस्तों आप जानते हैं, एक गीत जब तैयार होता है तो गीत का लिखार कोई होता है, जो लिखता है गीत को स्क्राइफर, वो भी एक कलाकार है, लेकिन लोग उसका नाम नहीं लेते हैं। जब एक गीत नहीं लिखा जाता तो उदित नारायण अलका वगैरह वगैरह ये लोग गीत कैसे गाते, तो एक स्क्राइफर का तालीफ भी किया जाहिर किया करने को, इसलिए कि स्क्राइफर एक स्क्राइफर जो है वो बैठ कर दिन रात सोचते हैं क्या लिखूं क्या लिखूं, और जाकर गीत बनाते हैं। और एक गायक गीत को गा लेता है, बढ़िया आवाज़ है तो गा लेता है। फिर भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है तेरे बिना दिल।

तेरे बिना दिल लगता नहीं मेरी जान, वाह वाह क्या बात है दोस्तों। अगर दिल लगाना है तो एक जगह पर दिल लगा लीजिए, दो जगह दिल लगाएंगे तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। आदमी है जो चार जगह दिल लगाता है वो भी होता है, हो सकता है भी। दोस्तों राजकुमार एक एक्टर था, जब वो कुछ कहते थे तो लोग ध्यान से सुनते थे कि अब क्या बोली। तो फिल्म मॉडल इंडिया जब बना, बहुत पॉपुलर हो गया राजकुमार, उसके बाद चारों बगल से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट आने लगा। तो एक रात, एक शाम की बात है, जब वो अपने दोस्त प्रकाश अरोरा और उनके पत्नी के साथ इवनिंग ड्राइव पर निकले थे। इस दौरान वो एक पान स्टोर पे रुके, उसी समय वहाँ कुछ लोग आए, और जब वहाँ पर लोग आए तो राजकुमार को परेशान करने लगे। कुछ देर तो राजकुमार बर्दाश्त करते करते रह गए, फिर भी जब बात उन्हें सहन शक्ति से भर गए तो उन्हीं ने बात या पलट कर जवाब देने लगा। आप जानते हैं राजकुमार का मुंह जो है वासी सबसे मौच कफाला, तो वो जवाब देने लगा, फिर लड़ाई हुई, लड़ाई का शुरुआत हो गया दोस्तों। और एक शख्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दुख के बात है दोस्तों, लड़ाई के समय और किसी ने नहीं देखा कि वो शख्स जो मर गया उन्हें किसी ने मारा, राजकुमार ने मारा या उसके दोस्तों ने, लेकिन वो शख्स दुनिया को छोड़ चल गए। और एक साल तक मामला चलता रहा, राजकुमार का प्रॉब्लम था एक साल तक, और काम नहीं कर सकता था। फिर भी ये बात जज के सामने पेश किया गया और राजकुमार को फ्री हो गया। राजकुमार को कहा गया कि आपने एक काम नहीं किया, फ्री हो गया। मैं नहीं जानता राजकुमार किया या नहीं किया, फर्दाख्त था। और आप जानते हैं, फिर भी उन दिनों के बाद है या इन दिनों के बाद है, जब लोग पॉपुलर होते थे तो उन्हें बहुत कम सज़ा भी मिलते थे। तो उसके बाद राजकुमार को यहाँ वहाँ से फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के शुरुआत हो गया। आप जानते हैं 3 जुलाई 1969 तक के बात है, जब राजकुमार का मृत्यु हो गया था मुंबई में। तो फिल्म हमराज का सॉन्ग है, राजकुमार और सिमी दोनों के आवाज, दोनों फिल्म में काम किया। और ये गीत महेंद्र कपूर, पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में आप

पिछले गगन के तले धरती पर पाँव परे राजकुमार के बारे में मैंने कहा भी दोस्तों, और अब की बार एक सॉन्ग मैं तैयार करके रखा हूँ। फिल्म चलते चलते का सॉन्ग है अभिजीत एंड अलका, दोनों के मीठे आवाज में आप सुनेंगे। शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी का फिल्म चलते चलते का सॉन्ग।

तौबा ये नसारे, तौबा नसार के बाद लाखों है यहाँ दिलवाले, फिर प्यार नहीं मिलता। कैसा बात है दोस्तों, लाखों है दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता। हाथ में फूल ले लो, देखो कैसे प्यार मिल जाएगा। फिल्म किस्मत का शौक है, विश्वजीत बबीता फिल्म में काम किया दोस्तों। विश्वजीत, विश्वजीत एक न सिर्फ एक एक्टर था, लेकिन अभी तो जियत है, मैंने कहा उनका एक्ट के समय पर, उन्हें सिर्फ एक एक्टर था लेकिन एक प्लेबैक सिंगर था दोस्तों। कई गाना वो गाए है, हॉलैंड देश में शो दिया है, सूरीनाम में भी शो दिया है। तो विश्वजीत का फिल्म किस्मत का सॉन्ग है, जो निकटिन आखन शास्त्र में फिल्म जो रिलीज हुआ, और महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में आप सुनेंगे, लाखों है यहाँ दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता।

डुएट सॉन्ग का बात जब हुआ दोस्तों, तो कुमार सानू आलका के साथ सबसे ज़्यादा डुएट पेश किया है या गाए है, और सभी डुएट में से एक डुएट है आज पहली बार दिल के बात की है। एल्बम तड़ी पार का सॉन्ग है और हम सब मिलके सुनेंगे फिल्म तड़ी पार का सॉन्ग आज दिल के बात। आज पहली बार दिल के बात की है।

अगर आप अपन जीवन साथी के साथ हो, प्रेमी के साथ हो, या किसी और के साथ हो जिससे आप दे हो कहने को कि आई लव यू, तो कोई बात नहीं, उसका हाथ पकड़ लीजिए दोस्तों, और स्लो मोशन का सॉन्ग चलेगा और आपको जानते हैं आपको क्या करना है, उसको पकड़ लीजिए, हाथ गले पर रख दिए या पीठी पर उसको हाथ रख दिए और तैयार हो जाइए दोस्तों, पहला सॉन्ग जो चलेगा और आप सभी के लिए। अगर इसमें उम्र के बात नहीं है, अगर आपको स्लो मोशन डांस करना है तो उम्र जवान या बूढ़ा नहीं देखा जाता है, उम्र नहीं देखा जाता, उन्हें उम्र नहीं गिना जाता है दोस्तों, इसलिए कि डांस सभी के लिए बना है।

मत बैठना, खड़े रहिए, हाथ पकड़ रहिए, अभी तो और गीत बाकी है दोस्तों, और अपन प्रेमी के साथ डांस कीजिए, आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाना।

मुस्कुराते हुए हाथ पकड़ ले रहना, नच मत छोड़ना दोस्तों, अभी तो पौ से नहीं है। अब की बार फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। वाह वाह वाह लवर्स। वा, वा, वा,

भेजा है खत के बाद दोस्तों एक छोटा सा पाउसर चलेगा, लेकिन पाउसर में चाय कॉफ़ी आप इस्तेमाल कीजिए अनवेंचमा हो रोत या वेत एगो बाको भी विस्की में ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये प्यार भरा पाउसर जो है इसमें सिर्फ प्यार मोहब्बत के बातें कीजिए। रिकनिंग जहाँ भरना है या वहाँ पर सौदा खरीदना वो सब बात छोड़ दीजिए, अपन प्यार के बात कीजिए। और अगर अभी आप शर्मिंदा हो, अभी यकीन नहीं आया आपके दिल में उससे कहने को कि आई लव यू, तो मैं सोचता हूँ दूसरा गीत तैयार होने से पहले आप कान में धीरे से कह दीजिए नाचते समय या गाना के बाद आई लव यू। आप यकीन के साथ मैं कहता हूँ वो मुस्कुराएंगे और हो सकता है आपके कान में भी कहेगा आई लव यू टू, तो एक पॉज चलेगा। पहला बार कहना है तो सोच समझ

0: काला है।
1: काला,
0: तुम्हारे ख्याल में ये कौन गा रहा है?
2: कहना है आज तुमसे पहली बार, क्या आप कह दिया कि अभी आपको हिम्मत नहीं कहने को? कोई बात नहीं, अब सी सॉन्ग चलेगा दोस्तों, ये पौष के बाद अब सॉन्ग तैयार हो गया है। आप खड़े हो जाइए, अपन सहेली, अपन जीवन साथी, अपन प्रेमी का हाथ पकड़ लीजिए या कंधे पर हाथ रख दीजिए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया,

क्या खुशी की बात है, उसे हिम्मत आया, वो काने में कह दिया कि आई लव यू, वो भी मुस्कुराए, हाथ और जबस पकड़ लिया, वाह दो साथी मिल गया है आपस में, दो प्रेमी आपस में मिल गया, बहुत खुशी की बात है। अब की बार अभी खड़े रहिए, होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो।

होठों से छू लो तुम, मेरे गीत अमर कर दे। आपको कुछ पीना है, कुछ खाना है, एक गीत के बाद अभी आपको मौका मिलेगा। अभी हाथ पकड़े रहना दोस्तों, कंधे पर हाथ धरले रहना, और अपन प्रेमी से तो आपने कह दिए है कि आई लव यू, और फिर उनसे कह देना कि मेरे गीतों का श्रृंगार हो तुम, जीवन का पहला प्यार हो तुम।

गीतों का सिंगार हो तुम के बाद, अपन प्रेमी के साथ आराम से बैठ जाइए, चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक बॉटल जो एक विस्की में ऐसे ब्लॉक के आइस या सोडा के साथ, या बाको वो भी हो सकता है, रोड वैन वेते वैन वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नित्य फेल है इन बॉटल जिसको लॉफर्स का प्रोग्राम चल रहा है। अपन जीवन के साथी के साथ प्रेम से और प्यार से बातचीत कीजिए इस सॉन्ग के साथ।

प्रश्न वाले तेरे जवाब नहीं के बाद आप फिर खड़े हो जाए, अपन प्रेमी का हाथ पकड़ लिए, दो कदम आगे दो कदम पीछे, स्लो मोशन डांस चलेगा और आपने तो हाँ कह दिया है, प्रेमी भी खुशी है, आप भी खुशी हो, तो अब की बार छूकर मेरे मन को, छूकर मेरे मन को किया तूने, किया तूने क्या इशारा।

शुक्र मेरे मन को किया तूने किया इशारा, अभी हाथ पकड़े रहिए, दो कदम आगे पीछे वाला बात है, आप जानते हैं स्लो मोशन डांस का प्रोग्राम चल रहा है और वो तो हाँ कह दिया है और प्रेमी भी बहुत खुशी है। अब की बार मुकेश के आवाज़ में आप सुनेंगे सुहानी चांदनी रातें, हमें सोने नहीं देंगे, आपके पाँव से नहीं मिलेगा, अगर आपको कुछ पीना है तो नाचते समय आप अपन ग्लास अपन मौक पकड़ लीजिए और इस्तेमाल कीजिए।

चांदनी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देंगे, ये लोफर्स का प्रोग्राम में एक आखिरी सॉन्ग चलेगा, अभी हाथ पकड़ रही है, पीठ पे हाथ रखे हुए तो और जबर से पकड़ लिए दोस्तों। आप जानते हैं आपका दही तो गर्म हो गए होंगे, भीतर भी गर्म हो गए होंगे। मैं कुछ बुरा बात नहीं कहता, कॉफ़ी चाय के जरिए भी हो जाता है, या एक बॉटल से पिए होंगे तो वो भी हो जाता है। तो एक आखिरी सॉन्ग चलेगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता हो, आपके क्या विचार है, अच्छा गीत है, जरूर अच्छा होगा।

0: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। डांस का प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुन है हर एक काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है, आप कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से।
1: मित्रों, सुख शांति संसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, जब मैं सूर्य उदय या सूर्य अस्त का जादू देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कोई भी बढ़ता हमेशा नहीं रहती है, कोई भी ना, और कोई भी रुकावट ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। मित्रों, इस हमेशा बदलती दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है मित्रों, इसीलिए समय के साथ चलें और जिंदगी के सफ़र का मजा लें। जिंदगी के सफ़र का मजा लो मित्रों। लीफ मैमसन अस एक द माखीफान जोंस ओपखांग ऑफ जोंस ओंदरखांग जी बसेफिक दैट हीन ओपकोम्स परमानेंट इस en geen tegenslag lang duurt. Alles verandert in dit steeds veranderende universum, beste mensen. Dus blijf positief, vaar mee met de stroom van de tijd en geniet van de reis van het leven. Mitron, our doston, सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे मजबूत हथियार धैर्य है, और सबसे अच्छी निश्चिता विश्वास है, और सबसे प्रभावी दवा हंसी के मित्रों हंसी है मित्रों। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए। अर्ध मैं द ग्रोटस्ट रेकडोम इस wijsheid. Het sterkste wapen is geduld. De beste zekerheid is geloof. En het meest effectieve medicijn is lachen. Lachen, beste mensen. Dus blijf altijd lachen. Hamesa, hasteren, hamesa, hasteren.

भाई बहनों, विश्वास और प्रार्थना दोनों दिखाई नहीं देती, लेकिन वे नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन बना देते हैं। उस विश्वास और यकीन को मित्रों जिंदा रखें, जिंदा रखें। मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खलूफ एंड खबैत जैन बैद ओन जिखबार मर जमाकन ओन मोहलक दिंगन मोहलक हाउ दत खलूफ en die overtuiging leven, beste mensen, en ga zo door. Sathiyon, agar tum peer nahi ban sakte, to jhaadi bano. Agar tum highway nahi ban sakte, to rasta bano. Agar tum suraj nahi ban sakte, to tara bano, tara bano. Kyunki ये तुम्हारे साइंस से नहीं है कि तुम जीते या हारते हो। मित्रों, कि तुम जीते या हारते हो, तुम जो भी हो, जो भी हो, उसमें बेस्ट बनो, अच्छा बनो मित्रों, अच्छा बनो। लिफमैन्स वेस अन स्ट्राइक अल्स ये गेन बूम कुन ज़ैन एंड अल्स ये गेन स्नेल वेह कुन ज़ैन वेस दन अन पथ अल्स ये गेन ज़ोन kunt zijn, wees dan een ster, want het is niet door je grootte dat je wint of verliest. Wees de beste in wat je ook bent en doet, lieve mensen.

भाई बहनों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं, ध्यान करिए मित्रों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं और उन्हें अपनी आत्मा में समा लेते हैं मित्रों, तो आत्मा स्वस्थ हो जाती है, खजौंत हो जाती है।

मन शांत और मजबूत हो जाता है, जिससे चारों ओर अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं मित्रों, और शरीर को बहुत ताकत मिलती है, स्ट्रांग हो जाए है शरीर, ताकत मिलती है मित्र। लिफमेंसन फमे वनीर वो खोच खनाद एन जेखन इंगन ऐत नोलखन एन ज इन ओंस जील ओपनीमन वर्त ओंस जील गजोन वर्त ओंस गेस्ट कालम एन स्टेरक वट लेड टॉट वेल विलेंडहेड इन ओंस ओमगेविंग एन वर्क्रेइट ओंस लिखाम इमेंस क्राफ्ट वट मूई इस दिट टॉ Wat is dit toch mooi, lieve mensen. Dus ga zo door, ga zo door. Dosto, hum sabhi mein apne aur dusron ke liye shanti, sukoon ke saath saath stress paida karne ki kshamta hoti hai, hum sabhi mein problem clear karne ke liye mitron. Aur ye hamara nazariya hai जो उनमें से एक को बनाता और पोषित करता है। मित्रों ध्यान करिए हम क्या बोल रहे हैं। और लिफमेंसन वे आलमाल हैवन एट फरमोकन ओम जो वेल रिस्ट स्टिल्ट अल स्ट्रेस द क्रिएरन फॉर ओन सेल्फ एंड फॉर अंदरन एंड हैट इस ओन हाउडिंग दी एन फन बेड ऑन द हाउड एंड फुट। ये हमारे में क्षमता है मित्रों, तो बुराई भी है हमारे में और अच्छाई भी है, तो इन दोनों में से हम क्या करना चाहते हैं, कौन सी लेंगे हम, कौन वाला अच्छा रहेगा मित्रों।

दोस्तों, दयालु दिल बगीचे हैं, मतलब ब्लूम टर्न है। एक दयालु दिल बगीचे यानी ब्लूम टर्न है। दयालु विचार जड़ें हैं, मतलब यादें हैं मित्रों। और दयालु शब्द फल है, दयालु कर्म फल है मित्रों। बेस्ट मेंशन फ्रिंदल का हार्तन जैंद तैनन, vriendelijke gedachten zijn de wortels en vriendelijke woorden zijn de bloemen. Vriendelijke daden zijn de vruchten. Pyare pyare bachon, samajhdari wo inaam hai jo aapko zindagi bhar sunne ko milta hai. Jabki aap baat karna pasand karte the. Mitron, beste en vriendelijke mensen, wijsheid is de beloning die je krijgt voor een leven lang luisteren, terwijl je liever zelf had gepraat, maar het wordt door anderen gesproken over jou. Goed of slecht, dat ligt in jouw handen. Jab zindagi aapko tootne aur rone ke sau karan de, to zindagi ko दिखा दो मित्रों कि आपके पास मुस्कुराने और हंसने के लाखों कारण है। मित्रों, मजबूत रहो, मजबूत रहो। बेस्ट मेंशन, अल्स हेट लीफन यू हंड्रेड रीडनन गीफ्ट ओम इन टू स्टोर्टन एन टू हाइलन, लात हेट लीफन दान जिन दैट यू अन मिलियन रीडनन हैव ओम टू लाखन en te glimlachen, lieve mensen. Dus blijf lachen en blijf sterk. Blijf lachen, blijf sterk.

0: दोस्तों, हम खुश करने की कोशिश में अपनी जिंदगी मुश्किल बना लेते हैं भाई बहनों, लेकिन अगर हम सबके साथ खुश रहने का फैसला करें तो जिंदगी सच में आसान, सुकून भरी और खुशनुमा हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है। मित्रों, आर्द्र मेंशन वो माकन है उन जेल्फ मूल दौर इधर इन तो फ्रीडन तो विलन स्टेलन मर है लीफन वो पास एक्ट मकलक ontspannen en vreugdevol als we ervoor kiezen om met iedereen gelukkig te zijn. Wat mooi is toch dit? Wat mooi is het? Dosto, samay kabhi hamara intezaar karne ke liye tayar nahi rehta. To phir hum hamesha sahi samay ka intezaar kyun karte hain? ध्यान करिए मित्रों, हम समय का इंतजार क्यों करते रहते हैं कि सही समय आएगा? सही काम करने के लिए कोई समय गलत नहीं होता है और गलत काम करने के लिए कोई समय सही नहीं होता है। मित्रों, इसे ध्यान से सुनने बाद में बहुत काम की चीज मैंने आपको बतलाया है। फ्रिंदन बेस्ट मैंसन, de tijd wacht nooit op ons. Waarom wachten wij dan altijd op het juiste moment? Er is nooit een verkeerd moment om de juiste dingen te doen. En er is nooit een goed moment om de verkeerde dingen te doen. Denk hier eens over na, beste mensen. Denk hier eens over na. Want wij zitten altijd met die gekke gedachten. Ating no boom, samay thik nae, het is geen goede tijd.
1: Nee,
0: de tijd is altijd goed. Wij moeten weten wat we doen.

मित्रों, किसी को माफ करना आसान है, सहज है, लेकिन उन पर फिर से भरोसा कर पाना एक बिल्कुल अलग कहानी है मित्रों, अलग बात है, मुश्किल हो जाए। बेस्ट मैनसन ईमंत फरखीफन इस मकलक मर ईमंत वेर कुनन फुरत्रोवन इसन हील अंदर फरहाल इसन हील अंदर तोरी। दोस्तों, ज्ञान पर व्यवहार हमेशा भारी पड़ता है। कई ऐसी स्थितियां होती है जहां ज्ञान काम नहीं करता है अनेवरों को, लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल लेता है। आपके आचरण, आपके मनीरी, आपके संस्कार, वो वहाँ मायने रखता है मित्रों। बेस्ट मैंसन खदरख हिफ्त आल तेत अनफोर्स प्रों का हाथ ऑफ कैनस एरजेन फेल सिटिवासिस वार इन कैनस तकोर्ट्स हिट मार खदरख आलस ओपलोस खदरख। भाई बहनों, बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और सफर का मजा लो, जीवन का सफर का मजा लो। बेस्ट मैंसन द्रूम ख्रूथ ब्लेव पॉजिटिव वर्क हार्ड एंड खनित फन द रेस फन ये लेफन खनित फन द रेस फन ये लेफन। बेस्ट मैंसन दैट इज अ मोयो ऑफ लॉसिंग। क्या सही है और क्या गलत है।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे न संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमम। सुनने वालों सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए हैं, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूँ और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के हवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलीग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुनने वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेखास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा की आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सितु, बीबी साहिबा रहीम बख्श जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेगास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे हैं, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनवलो, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी के कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जया किशोरी और सोनू निगम के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफ़र करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों है, जैसे कि देन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवा धाम मंदिर जो देन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों। जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

जय किशोरी जी के आवास में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं, एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय। क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है, विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुना है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुना है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

वीडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर सा गीत जो निकाला गया, एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे, सुनने वालों और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्तपन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी, हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

अ ग्रेट सॉन्ग हल्लालो, जिसमें काम किए राम चरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधा दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से रहे और दूसरा जो अटूट विश्व

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर ट्यून करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेगा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यसु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा हूँ, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हार्दिक से नमन करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए और ये कहना चाहूँगा कि हम सब फिर उपस्थित हो गए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर, जिसमें कुछ न कुछ संदेश और लेकर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे कोलेखा साथी अनुराधा जी, और अभी आगे में हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं भारत देश से, भारत से, और हमारे आचार्य सूरज देव जी के साथ, जो करगोपुर गोंडा डिस्ट्रिक्ट में और जाकर के उत्तर प्रदेश में ये और है, और वहाँ का वातावरण, वहाँ का संदेश हम सब के लिए रखने वाले हैं। तो सुनने वाले, पहले हम एक वही गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: सुनने वालों, मैं यहाँ पर और अपने आचार्य श्रीमान सूरज देव जी जो पंडित है और अपना गांव उत्तर प्रदेश गोंडा नाम शहर और वहाँ से एक छोटा सा गांव जिसका नाम है करगोपुर उससे जुड़ गए हैं और उनसे और अभी ये प्रश्न रखने वाला हूँ कि नवरात्रि हम लोगों तो यहाँ मनाते रहते हैं पर वहाँ पर कैसे नवरात्रि मनाया जाता है और उसके बारे में हमें कुछ और संदेश दे। हमारे साथ जो एकदम यहाँ से 8000 किलोमीटर दूर और गोंडा शहर और वहाँ से एक छोटा सा गांव जिसे करगोपुर कहा जाता है और उस गांव का नाम है और वहाँ से आचार्य सूरज जी को और हार्दिक से स्वागत किया जाता है। आचार्य जी, आपको और फाहुन रेडियो से और ये आपका ये पहला कार्यक्रम में नहीं भाग ले रहे और भी कार्यक्रम में आप भाग ले चुके हैं और आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है। आपको हार्दिक से नमन करते हुए ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे वहाँ का इस समय वातावरण है, कुछ उसके बारे में हम सबको सुनाइए।
1: संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। माता रानी की कृपा बनी रहे। आपने जो पूछा, इस वक्त पितृपक्ष हमारे भारत में पितृपक्ष मनाया जा रहा है। इस वक्त पूर्वजों को लोग जो है और इसी बहाने गरीबों की सेवा होती है, पशु पक्षियों की सेवा होती है और इसके बाद में मातृपक्ष आता है, यानी पितृपक्ष के बाद में मातृपक्ष आता है, यानी माता रानी की पूजा उपासना जब ये सब किया जाता है साध्य कार्यों को साध्य करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, यह एक अनुपम अवसर होता है। जी संजय जी।
0: आचार्य जी, आप ये संदेश रख दिया कि इस समय जो पितृ पक्ष चल रहा है, पितृ का और कार्य चल रहा है, तो वहाँ पर करगोपुर में कैसे पितृ पक्ष के मनाया जाता है, यानी कि वो ये एक त्योहार है या उसके बारे में कुछ और हम सबके लिए कहिए।
1: पौराणिक परंपरा के आधार पर अपने पितरों को लोग जो है जल देते हैं और उनके अनुसार माना जाता है कि इस वक्त जो उनके पूर्वज जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं वो स्वर्ग में जा चुके हैं या भटकते हैं, उनके उद्धार के लिए, उनके उत्थान के लिए इस वक्त जो है उनके बच्चे यानी हम सब जान लीजिए उनको जो है जल देते हैं, उनके निमित्त हम अच्छे कर्म करते हैं और कर्मों के अनुसार आगे का भविष्य हमारा संवरता है, यही हमारी मान्यता है।
0: और आचार्य जी, हम लोगों ने देखो कुछ 150 साल से और सूरीनाम में बसे हुए हैं, सूरीनाम से फिर हॉलैंड आए हैं और हॉलैंड में आकर के भी उस समय से आज तक भी हम लोगों हम सब यहाँ पे भी पितृ को और अर्घ यानी कि तिरांजलि दिया जाता है और देते आए हैं और इसमें और ये जो अभी आपने कहा कि पितृ का समय चल रहा है पर पितृ पक्ष के बाद में जो ये कृष्ण पक्ष में कहा जाता है ना, ये पितृ पक्ष होता है
1: जी,
0: तो इसके बाद में अभी जो आप कह रहे थे मातृ पक्ष आने वाले हैं, तो उस अंतर्गत में कुछ और सुनाइए हम सबको।
1: देखिए, हम सभी को, हम माँ बगलामुखी के उपासक होने के नाते हमें बहुत ही इंतजार रहता है कि माँ का पक्ष कब आवे, नवरात्रि कब आवे, असाध्य कार्यों को साध्य करने के लिए गरीबों के, यानी लोग अपने कारण से गरीब होते हैं, गरीबी वैसे नहीं आती है, नियम व्यक्ति भूल जाता है, पूजा पद्धति भूल जाता है, अपने सनातन धर्म को भूलने लगता है और ये पाश्चात्य सभ्यता में हावी हो जाता है तो वह गरीबी के अंतर्गत आने लगता है। इसीलिए नवरात्रि के समय यानी श्री की पूजा की जाती है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, अपने शत्रुओं के समन के लिए इसी प्रकार माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। मन चाहे धन की प्राप्ति के लिए, मुकदमे में विजय की प्राप्ति के लिए, अपने शत्रुओं के निवारण के लिए माँ बगलामुखी की साधना की जाती है। बगलामुखी माता इस कलयुग में सुखों को देने वाली हैं। इस हेतु हम लोग जो है माँ बगलामुखी का साधना इस नवरात्रि में विशेष रूप से करते हैं और वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ती है, जो दो नवरात्रि गुप्त होती है और 2 नवरात्रि लोग जानते हैं, जैसे चैत्र की नवरात्रि और आश्विन यानी कुंवार की नवरात्रि मनाई जाती है। कुंवार की नवरात्रि में जो कि आ रहा है, इसमें जो है माँ बगलामुखी का विशेष मंत्रों से पूजन किया जाता है और उनको प्रसन्न करके मन चाहे वरदान पाए जा सकते हैं और पाए जाते हैं।
0: तो आचार्य जी, माँ बगलामुखी शायद हमारे रेडियो से इस समय जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं, शायद इसके बारे में बहुत कम लोग हो गए जो जानते हैं। जरूर हम लोग यहाँ पर नवरात्रि के समय पे नव माता के यानी कि जैसे कि जो नव माता के नाम से और जो झंडी गाड़ा जाता है उनके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, पर माँ बगलामुखी एक विशेषता है जिसे आपके और जैसे कि अभी आपने कहा कि कितने चीजों का निवारण हो सकता है, पर ये माँ बगलामुखी का और पूजन कैसे किया जा सकता है?
1: सर्वप्रथम मैं आपको एक ध्यान मंत्र है माँ बगलामुखी का, जिनके माध्यम से माता जी का ध्यान किया जाता है। जीव

0: हम नमामि माँ बगला मुखी ऐसी माता हैं जिनके माध्यम से जिनके पूजन से मात्र स्मरण मात्र से दुख कलेश का नाश होता है। माँ बगला मुखी का स्मरण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ बगलामुखी हर प्रकार से अपने भक्तों को अपने बच्चों को कष्टों के निवारण के लिए वो तत्काल क्षणिक जो है तत्काल लाभ देती हैं। उनके स्मरण मात्र से उनके ध्यान से ही उनके विधान से ही उस भक्त का कल्याण हो जाता है और माँ बगलामुखी सर्व शत्रुओं पर विजय प्राप्त करती हैं। इस हेतु माँ बगलामुखी का पूजन किया जाता है। माँ बगलामुखी का प्रमुख मंत्र है जो बीज मंत्र है वो हलीम मंत्र है और इनका मंत्र जो है जैसे कहा जाता है ओम हलीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है जिभ्याम किलय बुद्धि विनाश है हलीम ओम स्वाहा। यह माँ का मंत्र है और इस मंत्र में सब कुछ छिपा है, सब सार है, सब समझने की जरूरत है। कहते ओम हलीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम यानी सारे शत्रुओं के सारे दुष्टों का समन करने के लिए सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम यानी उसके वाणी को उसके मुख को वाचम मुखम पदम उसके पैर को स्तंभित करती हैं। वाचम मुखम पदम स्तंभ है जिभ्याम के लिए उसकी जिभ्या को खींचती हैं उसकी जिभ्या को स्तंभित करती हैं। जिभ्याम किले वाचम मुखम पदम स्तंभ है जिभ्याम किले बुद्धिम विनाश है उसके बुद्धि का विनाश करती हैं बुद्धिम विनाश है हलीम ओम स्वाहा। उसके बाद में सर्व प्रकार से अपने भक्तों का कल्याण करती है शत्रु को स्तंभित करती है वाणी से मुख से पद से जिभ्या से। इसीलिए माँ बगलामुखी का नाम सुमरण किया जाता है। माँ बगलामुखी सत पर जो है दमन करती है शत्रुओं का और अपने भक्तों को सुख देती है। माँ बगलामुखी को जो है बारे में हम लोग कहते हैं कि सिर नमाई बगलामुखी माँ ध्यान धुरु मैं आज कृपा करो मो पर सदा पूर्ण हो मम काज। इसी प्रार्थना से हम लोग शुरुआत करते हैं कि हे माँ बगलामुखी हम आपको ध्यान करते हैं और आप हमारे का जो हमारे कार्यों को सिद्ध करें जो सत्य कार्य है जो अच्छे कार्य है। माँ बगलामुखी विविध नामों से जानी जाती हैं जैसे अमृताय नमः यानी अमृत को देने वाली हैं, मानदाय नमः मान सम्मान में वृद्धि करने वाली हैं, पुष्ट करने वाली हैं, तुष्ट करने वाली हैं और धन धान्य से समृद्ध करने वाली हैं। ऐसी माँ बगलामुखी हर प्रकार से अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करती हैं। खासकर वो अपने शत्रुओं यानी भक्तों के शत्रु अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है उसको चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा है वह अपने मुकदमेबाजी से बहुत परेशान है उसको निवारण नहीं मिल पा रहा है वह एक बार माँ बगलामुखी के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए वह हल्दी को कच्चे धागे में लपेट करके अच्छत पीला अच्छत बना करके उसमें स्थापित करे और माता रानी का ध्यान करे उसके सारे कष्ट का उनके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। माँ बगलामुखी के बारे में मैं बहुत सारी चीजें हैं आकर्षण के हेतु देव स्तंभ देवताओं को स्तंभित करने का एक मात्र अगर कोई मंत्र है तो माँ बगलामुखी का मंत्र है। मनुष्य को स्तंभित किया जा सकता है आकर्षण किया जा सकता है किसी के जीवन में अगर कलह है तो उसको जो है उसके निवारण के लिए माँ बगलामुखी एक मात्र हर प्रकार से आपके सुखों को देने वाली है। रोग के निवारण के लिए समस्त कार्यों के साधने के लिए शत्रुओं के शक्ति का नाश करने माँ बगलामुखी हर प्रकार से आपके लिए सहज हैं। एक प्रकार लोगों के जानने में तो बहुत कठिन है लेकिन बहुत ही सरल है क्योंकि बिना गुरु के बिना सानिध्य के कोई मंत्र सिद्ध नहीं किया जाता है। इसलिए माँ बगलामुखी की साधना सदैव माँ बगलामुखी के उपासक के ही उसमें निर्देशन में करना चाहिए।
1: आचार्य जी जिस प्रकार से आप हम सबको माँ बगला मुखी माता के अंतर्गत में संदेश सुनाई और ये बात हमें भी अच्छा लगा सुनने को क्योंकि मैं खुद भी और इसके बारे में बहुत जानकारी मुझे कोई जानकारी नहीं था और आप अभी जो जानकारी दिए कि जा करके करगोपुर में और जा करके और वहाँ नवरात्रि के समय पे माँ बगला मुखी का खास करके और पूजन प्रार्थना आराधना किया जाता है और उससे क्या प्राप्त हो सकता है, ये बात हमें और आप रेडियो से सुनाइए और

और जा करके हमारे आचार्य जी का निवास स्थान है। आचार्य जी, हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद फिर हम आपसे आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे।

0: सुनने वालों, ये सुंदर से गीत के बाद हम सब फिर आचार्य जी से अभी और जुड़े हुए हैं। और आचार्य जी, हमें इस बात को सुन करके, क्योंकि अपना गांव, अपना और स्थान जहां से और कुछ 150 साल पहले हमारे पूर्वजों जो छोड़ करके और सूरीनाम का गए, पर शायद हमें इस बात को पता नहीं था माता बगला मुखी का और पूरा वृतांत जो, और जा करके हमारे आचार्य जी सूरज देव जी जो और करगोपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो आचार्य जी, हमें कैसे हम साधना कर सकते हैं और माँ बगला मुखी को?
1: संजय जी, मैंने आपको बताया कि नवरात्रि के समय, प्रतिपदा के समय हम माँ बगला मुखी का स्मरण करते हैं और शाम को घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं
0: जी,
1: और हल्दी चावल पीत अक्षत यानी पीला अक्षत और हल्दी में, हल्दी की जो गांठ होती है उसमें हम कच्चा कलावा को बांध करके और माता के निमित्त स्वरूप में उनको स्थापित करते हैं, क्योंकि माँ बगलामुखी हरिद्रा सरोवर से प्रकटी हैं। जब कलयुग में चारों तरफ हाहाकार मचा, हर प्रकार से पाप बढ़ा, तो एकमात्र हमारे कष्टों को हरने के लिए माँ बगलामुखी का अवतीर्ण हुआ। माँ बगलामुखी भगवान विष्णु की अति प्रिय हैं और माँ बगलामुखी अपने भक्तों के दुखों को हरने के लिए हर प्रकार से तत्पर रहती हैं। इसीलिए माँ बगलामुखी की साधना नवरात्रि में, यदि 9 दिन माँ बगला की साधना करके और हेलेम मात्र बीज मंत्र से उनकी स्मरण करते हुए, जप करते हुए असाध्य कार्य को साधा जा सकता है। माँ बगलामुखी की साधना रावण के पुत्र मेघनाथ ने करी। माँ बगलामुखी की साधना

0: करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के आगे झुकता नहीं, वह दुश्मनों के शत्रुओं के बीच में विजय होकर के निकलता है। माँ बगलामुखी का साधक इस संसार में कहीं कोई कार्य उसके लिए असाध्य नहीं रहता। माँ बगलामुखी हर प्रकार से कष्टों के निवारण के लिए ही हैं।
1: ये सुंदर संदेश आज हमें मिला, जो अपना गांव जहां और अपना गांव जिसे हम करगोपुर कहते हैं, और वहां से जहां हमारे पूर्वजों गए थे, और आज हमें इतने साल बाद, यानी कि हम हैं पांचवा जनरेशन, और हम आज इस बात को पता चला कि हमारे गांव में कौन, और माता का नवरात्रि के समय, माता का समय जो होता है, तो खास करके और पूजन आराधना किया जाता है। आचार्य जी, जैसे कि अभी हमारे कार्यक्रम को सुनने वालों कितने लोग हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और कार्यक्रम में जो अपने घर से बैठ करके सुन रहे हैं, कितने लोग हैं जो अपने गाड़ी में और चलाते हुए सुन रहे हैं, और कितने लोग हैं जो और कहीं भी, और यानी कि अपना इंटरनेट द्वारा जो ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हम ये उनके लिए हमें ये प्रश्न है कि शायद हमारे बच्चों जो अभी सहयोग नहीं देते होंगे नवरात्रि में, क्योंकि कितने मंदिरों में यहाँ हॉलंत में और सूरीनाम में आजकल चल पड़ा है कि नवरात्रि में और कन्या पूजा किया जाता है, कार्यों जो कि शायद पहले कम होते थे पर आजकल खूब जोर तोर से किया जाता है, तो उसके बारे में कुछ संदेश है आपके?
0: जी संजय जी, माता के स्वरूप में कन्याओं का पूजन किया जाता है। नौ कन्या 9 वर्ष तक की पूजन करें, बहुत श्रेष्ठ लाभ होता है, बहुत बढ़िया, और उनके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती। माता रानी हर प्रकार से अपने भक्तों के कष्टों को निवारण करती हैं। माँ बगलामुखी विविध, जैसे नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन माँ पराम्बा, पराशक्ति, माँ बगलामुखी हर प्रकार से अपने भक्तों को बस एक ही स्वरूप में, एक ही रूप में दिखाई देती है। माँ बगलामुखी सर्व सुखों को देने वाली हैं। माँ बगलामुखी हर प्रकार के कष्टों को हरने वाली हैं, बसरते माँ बगलामुखी की साधना माँ बगलामुखी उपासक के निर्देशन में ही किया जाता है, क्योंकि छोटी मोटी गलतियां हो जाती है तो माँ माफ कर देती हैं, लेकिन अगर हम अनभिज्ञ हैं, उस रास्ते पे नहीं जानते हैं, तो उसे बिना गुरु के निर्देशन में नहीं करना चाहिए। उसे माँ जो है, जो हमारे गुरु जी, जैसे हम गुरु जी के सानिध्य में हमने साधना किया, हमने माँ बगलामुखी की साधना से पहले मैंने शिव अघोर साधना की, माँ बगलामुखी साधना से पहले शिव जी के मंत्र यानी ओम ह्रोम जूम सह, ये जो मंत्र है इसका पहले मंत्र का जप किया जाता है, माँ बगलामुखी की साधना की जाती है, फिर माँ बगलामुखी के मंत्रों का जप किया जाता है। इसीलिए अघोर साधना के बाद हमें अनुभव हुआ, माता रानी की कृपा हुई, मैं उधर आकर्षित हुआ और माँ बगलामुखी की साधना हमने प्रारंभ की और असाध्य से असाध्य कार्यों को सिद्ध किया। यह मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है, स्वयं का अनुभव है।

0: जी संजय जी, तो इसी माध्यम से, आपके रेडियो के माध्यम से मैं सभी जितने भी लोग जुड़े हैं इस चैनल में, आपके रेडियो में जितने भी देश के लोग जुड़े हैं, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं, और माता रानी की विशेष कृपा बने ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं, माता रानी के चरणों में अरदास लगाता हूं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति अपने दुखों से कलेटों से अगर हो तो आपके माध्यम से एक बार जरूर वह रेडियो के माध्यम से दिशा निर्देश ले सकता है और माता रानी को नाता है और उसके मनवांछित हो सकते हैं। माता रानी की पूजा प्रतिष्ठा करें, माता रानी के कोई अगर मंत्र नहीं जानते हैं तो माँ बगलामुखी का ध्यान करें, गुरु स्वरूप में जिसको गुरु बनावे माँ बगलामुखी का, उसका जो ध्यान करें और माता रानी उसके ऊपर विशेष कृपा बरसाएंगी, यह अटल विश्वास है, क्योंकि आज तक कोई भी दास माता रानी के द्वार से उदास नहीं गया है। जी संजय जी,
1: कोई भी दास माता रानी के द्वार से उदास नहीं गया है, अच्छा संदेश रखे आपने। सुनो लो, यहाँ जो हमारे साथ जुड़े हुए आचार्य सूरज देव जी, जो भारत करगोपुर से हमारे साथ इतना संदेश को और बांटे, पर आचार्य जी एक छोटा सा प्रश्न और है। हमारे जो नवरात्रि में सभी जो जा कर के सुंदर सुंदर अपने बच्चों के साथ लेकर के और मंदिर को जाते हैं, खास करके पूजन आराधना किया जाता है, पर शायद हम लोग यहाँ पर थोड़ा से उस पर ध्यान कम देते होंगे, पर बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो उनके साथ माता पिता क्या कर सकते हैं, कैसे कि सुबह में किस प्रकार से उन्हें धर्म के रास्ते पे ले जाने के लिए माता पिता अपने बच्चों जो बच्चे होते 6 साल के 7 साल के उसे क्या सिखा सकते हैं, क्या उसके बारे में आप हम सबको कुछ और संदेश दे सकते हैं?
0: संजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। यह ऐसा समय है कि सनातन संस्कृति से लोग कुछ लोग विमुख होते जा रहे, पाश्चात्य सभ्यता हावी होते जा रहे। हमारे सनातन में कभी भी लोगों के अहित के बारे में नहीं, हित के बारे में ही सोचा है। अपने बच्चों को अच्छी संस्कार तभी दे सकते हैं जब अच्छे स्थानों पर ले जाएं। हमारा अच्छा स्थान, हमारा जो सिख आदर्श यानी हमारा मंदिर क्रम, यही सब है। यहाँ पे हम जाएंगे, भगवान राम भगवान कृष्ण माँ के बारे में जानकारी देंगे, उनके बारे में बताएंगे कि माँ माँ ये जो है अकेल जो है धूम्रलोचन महिषासुर ऐसे शत्रुओं का शुम्भ निशुम्भ का वध कर, यानी उनके अंदर इतना साहस भर दीजिए अपने बच्चों के अंदर, अकेले सब कुछ हो सकता है, अकेले चल करके, क्योंकि साथ में तो जब आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपके पीछे लोग साथ में जुड़ जाएंगे। राम जी चाहते तो अयोध्या से सेना बुला करके रावण के लंका पे आक्रमण कर देते, लेकिन नहीं, उन्होंने लोगों के बीच में जाकर के उनके अंदर आत्मबल जगाया, उनके अंदर आत्मशक्ति जगाई और उनके सारे रावण जो असंख्य सेना के साथ और विरथ रथवीरा यानी बिना रथ के राम यानी रथ भी नहीं था और वो रावण रथ ही था, उसको जाकर के उसके लंका पर विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के बाद में स्वयं उसके अधिपत्य नहीं किया, विभीषण को वहां का राजा बनाया। ये हमारा सनातन है, सनातन संस्कृति दूसरों को दुख नहीं देता, लोगों को सुख बांटते हुए ये जो है सनातन सदा से चला आ रहा है। हम सभी लोगों को सुख स्वरूप में रहना चाहते हैं, इसीलिए माता रानी की उपासना हो या कोई भी अनुष्ठान हो, आप दूसरों के सुख के लिए ही कर सकते हैं। यदि आप भी अपने बच्चों के ही लिए जा रहे हैं ना, अगर मंदिर जा रहे हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के ही कर रहे हैं। इसीलिए ये हमारी सनातन परंपरा ही यही है। हम आप जो है जितने भी इस चैनल में इस रेडियो में जुड़े लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चों को अच्छी जगहों पे जरूर ले जाए, स्थानों पे अच्छे आश्रम पे जो है ले जावे, माता रानी के स्थान पे ले जावे, राम जी के मंदिर में ले जावे तो राम के आदर्शों के बारे में बतावे, माता जी के मंदिर में ले जावे तो माता जी के जीवन चरित्र के बारे में बतावे, कहीं भी जावे सनातन धर्म से प्रेरित वहां आपको सुख मिलेगा और जहां सनातन नहीं है वहां आपको दुख मिलेगा। सनातन नहीं है वहां मांस मदिरा का सेवन होता है, जहां आदर सत्कार नहीं है वहां क्या होगा, वहां जो है पाचा सभ्यता हावी होगी और बच्चों के भविष्य खतरे में जाएगा। इसीलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप लोग धर्म की तरफ, धर्म जो धारण करता है, धर्म यानी सत्य को धारण करता है, अहिंसा को धारण करता है, आप एक मूर्ति है जो जो इसको इस रास्ते पे चलता है और सदैव सुखी होता है और धर्म उसकी रक्षा करता है। जी संदेश
1: सुनने वालों, यहाँ तक जो हमारे आचार्य जी सूरज देव जी जो करगोपुर से हमारे साथ जुड़े रहे और हमें और काफ़ी जानकारी दिए माँ बगला मुखी का, और ख़ास करके जरूर आप जैसे कि संदेश को सुने हैं कि अपने बच्चों को लेकर के भी और इन स्थानों से जा करके, क्योंकि आप शायद आज आपके लिए समय बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है क्योंकि आप पति पत्नी काम में भिड़े हुए हैं और अपने बच्चों के लिए जो जा करके समय निकालते हैं, पर समय निकालते हैं स्वयंलेस और समय निकालते हैं फुटबॉल और समय निकालते हैं अन्य और स्पोर्ट्स, ये भी करना चाहिए पर हो सके तो धर्म के और छात्र पे लेकर के और अपने बच्चों तो मंदिर आदि में भी लेकर जाइए। सुनो वालो, यहाँ तक हमारे और सूरज देव जी आचार्य जी, आचार्य जी आपको हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है और इस कार्यक्रम में भाग लेने को, और ये आशा रखता हूँ कि आप इसी तरह से अपने ओर से करगोपुर जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से और हमारे दादाजी और वहाँ से जाकर के 1896 में और जो सूरीनाम के गए और आज हमारा और जो एक भाईचारा हो गया है और उसे हम जरूर निभाते रहे और इसी प्रकार से और कार्यक्रम में भी सहयोग देते रहना।
0: जी संजय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका आभार है कि आपके माध्यम से लोगों को क्या जानकारी पहुंची है और लोग सनातन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जो पाश्चात्य सभ्यता हावी हो रहा था अब वह हावी नहीं हो पा रहा है, और इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपका भी एक छोटा सा प्रयास, हम तो यही जानते हैं गिलहरी की सेवा की भांति हम लोग सनातन धर्म को जागृत करने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए हम सभी निकले हैं। इसीलिए हम आपको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं और माता रानी से आपके लिए विशेष अरदास करते हैं कि माता रानी सदैव आप पर कृपा बनाए रखें और ऐसे ही आप जो सनातन संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक करते रहें।
1: सुनने वालों, धन्यवाद देते हुए आचार्य जी को और हमें गीत की ओर बढ़ेंगे।

श्रीमती विद्यान्वती चैतू का आवाज में हम ये सुंदर सा गीत को सुने। सुनने वालों, हम न्यूज और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे। अभी हमारे कोलेखा साथी जो और भी संदेश और रखने वाले हैं, मैं देख रहा हूँ कि सब तैयारियाँ हो चुके हैं, फिर भी हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में हम आपके साथ फिर जुड़ जाएंगे।

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030, een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna 2 keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.
2: VAHON Hindustani Radio. हमारे साथ जो स्टूडियो में उपस्थित हुए हमारे कोलीगा साथी अनुराधा जी जो भारत के रहने वाले हैं, भारत के और संदेश हर बार सुनाते हैं और भारत के अंतर्गत में भाई जब हम देखा जाए कि अनुराधा जी आपको हार्दिक से स्वागत करते हुए आप अपना पहला एंट्री डालिए और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
3: नमस्कार सुनने वालों, अनुराधा की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और मेरा प्यार। आज मैं संजय जी सबको सुनने वालों को मैं हमारे महात्मा गांधी जी के बारे में बताना चाहूंगी। ये इनका नाम भारत में नहीं पूरे विश्व भर में सब महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से भी जानते हैं और महात्मा गांधी के जन्म दिवस जो कि 2 अक्टूबर और उसमें महात्मा गांधी जयंती बनाई जाती है, महात्मा गांधी जयंती उनके जन्म दिन के दिन ही बनाई जाती है। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा सा मैं सुनने वालों को बताना चाहूंगी, उनके महात्मा गांधी के मूल्यों के बारे में, नैतिक मूल्यों के बारे में, और नैतिक मूल्यों मतलब उनके मॉरल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की वो क्या किस पर विश्वास करते थे। तो आप बताइए संजय जी, क्या आप सुनना चाहेंगे?
2: अनुराधा जी, ये तो आपने प्रश्न रख दिया कि आप सुनना चाहेंगे, तो ये तो एक अलग सा प्रश्न हो गया। क्योंकि देखिए अनुराधा जी, कहीं भी सूरीनाम में भी और हॉलैंड में भी, इंडिया में भी, हमारे घर में जब एक परिवार जन्म लेता है और ख़ास करके 2 अक्टूबर के, तो शायद अपने आजा का जन्मदिवस नहीं पता होगा, नाना का जन्मदिवस नहीं पता होगा, पर कभी भी अक्टूबर महीना में और ख़ास करके 2 अक्टूबर के जो और जिनका जन्म होता है, तो वो ये बात अपना और तय हो जाता कि उसी दिवस को और महात्मा गांधी जी का और जन्म हुआ था, ऐसा है कि नहीं?
3: जी संजय जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, सही बताया कि 2 अक्टूबर को जो अक्टूबर के महीने में भी हम बड़ा अच्छा महीना मानते हैं कि और जिस दिन महात्मा गांधी जैसे महापुरुष उनका जन्म हुआ था। तो आपको मैं बताऊं तो गांधी जी 2 अक्टूबर को भारत में पोरबंदर जगह में उनकी पैदाइश हुई थी 1869 में।
2: तो अनुराधा जी, जैसे कि आप कह रहे हैं 1869 यानी कि 1869 ना?
3: जी जी, 2 अक्टूबर
2: 2 अक्टूबर 1869 में,
3: 2 अक्टूबर 1869।
2: और पोरबंदर आपने कहा, तो वो पोरबंदर कहाँ होते हैं? वो गुजरात में है ना
3: जी संजय जी? तो ये गांधी जी का जन्म गुजरात में पोरबंदर नामक एक जगह है जहां पर उनका जन्म हुआ था। और इनका पूरा नाम हम तो उनको बोलते हैं गांधी जी, पर उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म जहां पर हुआ तभी वो गुजरात के रहने वाले थे। तो संजय जी, गांधी जी का तो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, तो उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और उनकी माता श्री का नाम था पुतलीबाई। और गांधी जी की का विवाह कस्तूरबा जी से हुआ था। कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी थी, वो लोग गुजरात में रहने वाले थे। और आज मैं गांधी जी के बारे में, हम उनके नैतिक मूल्यों के बारे में हम बातें करेंगे, जिससे लोगों को पता चले कि महात्मा गांधी एक महान पुरुष तो थे ही, पर उनकी क्या विचारधारा थी। तो और हम उनको प्यार से, आपको पता है कि इतने महान व्यक्ति थे तो हम उनको इसलिए महात्मा बोलते हैं। महात्मा मतलब महान आत्मा। और प्यार से उनको बापू भी बोला जाता है। सब लोग गांधी जी को बापू के नाम से बोलते थे। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक कोई अच्छा सा गीत हो जाए और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ।

0: सुनने वालों, ये सुंदर से गीत के बाद हम सब फिर और ये जो महात्मा गांधी के अंतर्गत में हम सब के लिए अनुराधा जी अपने ओर से संदेश रख रहे हैं। अनुराधा जी, आपके माइक इस समय मैं ऑन कर देता हूँ।
1: तो सुनने वालों, हम आगे बढ़ते हैं और आपको मैं थोड़ा सा गांधी जी के बारे में बताती हूँ। तो इस पृथ्वी पर तो लाखों लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और अंत में इस दुनिया से चले जाते हैं। मानवों की इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐतिहासिक रूप में महान बनते हैं। यह महानता उनके एक विशिष्ट पहचान और विशेष कार्यों को दर्शाती है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति का उदाहरण जो मैं देना चाहूंगी और आप ने समझ ही लिया है और आप जानते भी हैं कि वो है महात्मा गांधी। उनकी महान विचारधारा और उनके नैतिक मूल्यों इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। महात्मा गांधी हमेशा से ही अपने जीवन में अपने नैतिक मूल्यों माने कि मॉरल वैल्यूज और सिद्धांतों माने कि प्रिंसिपल्स का पालन किया करते थे। उनके इन्हीं नैतिक मूल्यों सिद्धांतों से आज सारी दुनिया के लोग प्रभावित हैं और हम आज इसी विषय में हम आगे बढ़ते हैं संजय जी, कि ये कौन से नैतिक मूल्य और सिद्धांत गांधी जी के थे जिनसे पूरी उनको पूरी दुनिया जानती है, पहचानती है और हमें गर्व होता है कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर जिस देश से महात्मा गांधी ने जन्म लिया, भारत देश। मैं उनके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी कि महात्मा गांधी को लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप से भी जाना जाता है। राष्ट्रपिता, वो फादर ऑफ द नेशन, भारत के फादर ऑफ द नेशन भी कहलाते हैं और हम उनको प्यार से बापू भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। यह वही इंसान है जिन्होंने भारत को लंबे समय से कर रहे अंग्रेजों के शासन से मुक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र के लिए की गई इनकी सेवाएं अविस्मरणीय हैं। वो एक महान नेता और अद्वितीय राजनेता थे जिन्होंने लड़ाई और रक्तपात के बजाय शांति से किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना जीवन अपने कुछ सिद्धांतों मूल्यों के अनुसार जिया जिन्हें लोग आज भी मानते हैं। तो संजय जी, आपने सुना, देखिए गांधी जी का जो पूरे विश्व भर में जो 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के नाम से बोलते हैं, वो उनका जीवन हम उस दिन उनका मनाए इसलिए जाता है कि जिससे कि जन्मदिन तो हुआ ही एक महान व्यक्ति का, पर हम उनकी विचारधाराओं पर हम थोड़ा सा लोगों को और लोग समझा सके हैं कि देखिए एक ऐसे महान पुरुष थे जो जिन्होंने ऐसी विचारधारा जिनकी थी जो अहिंसा और पर विश्वास करते थे और हमें भी ऐसे बड़े इंसान महान इंसान के रास्ते में कोशिश करनी चाहिए कि उनके हम उनके जैसे बनने की कोशिश करें। आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक और कोई सुनने वालों का एक अच्छा सा गीत आए जाए।
0: बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं अनुराधा जी, एक सुंदर सा देशभक्त गीत हम प्लेयर पे चुन करके रख चुके हैं। हमारे सूरीनाम का कलाकार के गायक गाए हैं और इस देशभक्त गीत के अंतर्गत जो और हम प्लेयर पे और रख चुके हैं और अभी हम सब फिर दोबारा आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: इस सुंदर से गीत के बाद हम सब फिर आपके साथ जुड़ गए हैं और अनुराधा जी जो हमें और महात्मा गांधी के अंतर्गत अपने ओर से संदेश रख रहे हैं। अनुराधा जी, हम जब जानते हैं छोटे बचपन में हमें ये सिखाया गया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, ये भी तो एक गांधी जी का संदेश था ना?
1: जी, आपने सही सही कहा संजय जी कि ये महात्मा गांधी का ही विचारधारा पर आधारित ये कहावत है। तो मैं इस पर और थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी तो सुनने वालों को थोड़ा सा पता चले कि उनकी क्या उनकी मूल सिद्धांत किस सिद्धांतों को वो मानते थे। गांधी जी, जैसे आपको पता है संजय जी, बहुत ही सारा उनका पूरा सारा जीवन बहुत ही सादगी भरा जीवन व्यतीत किया उन्होंने और अपने जीवन के अधिकांश वर्ष लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए व्यतीत किया। उन्होंने अपना जीवन, पैदाइश तो उनकी भारत में हुई थी, फिर वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने काफी समय अपना व्यतीत करा जहां पर वो एक वहां पर वकालत करते थे और बाद में वे फिर भारत देश आए और हमें भारत तो उनका जो योगदान रहा है हमें स्वतंत्र कराने में अंग्रेजों के खिलाफ, तो आज मैं उसी के बारे में उनके सिद्धांतों के बारे में मैं बताना चाहूंगी। तो सबसे पहला जो उनका सिद्धांत मूल्य जो वो मानते थे वो था अहिंसा। गांधी जी के अनुसार अहिंसा लड़ाई में प्रयुक्त होने वाले हथियारों में एक प्रमुख हथियार है। उन्होंने कहा कि हमें अपने विचारों और कार्यों में अहिंसा को अपनाने की आवश्यकता है। अहिंसा माने कि नॉन वायलेंस। वे अपने जीवन में अहिंसा का सख्ती से पालन करके राष्ट्र की स्वतंत्रता में के अभियान में जनता का उन्होंने बहुत समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे और वह अहिंसा के हमेशा से उसके उपासक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा को अपनाने से बड़े पैमाने का रक्तपात और विनाश होता है और अहिंसा युद्ध जीतने का एक अचूक हथियार के रूप में है। तो ये एक इनकी जो मूल धारणा थी कि उन्होंने ना केवल लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में इसका उपयोग भी किया। उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन लोगों को सलाह दी कि वह किसी भी हिंसक तरीके का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने हिंसक प्रक्रियाओं को अपनाने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों से निपटने को कहा और यही उनकी जो सबसे बड़ी शक्ति थी और उन्होंने जिसको सबसे कहा कि अपनाओ वो था अहिंसा। ये उस समय की बात भी नहीं है, ये आज भी उतने ही कायम है, उतनी ही लागू है आज के हमारे जीवन में और आज का जो माहौल है पूरे विश्व भर में कि हम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं तो हमें वो अहिंसा द्वारा ही सबसे बड़ा हथियार तो अहिंसा है, नॉन वायलेंस, जो हमने हर इंसान को हर मनुष्य को अपनाना चाहिए। तो ये सबसे उनकी विशेष मूल धारणा जो कहते हैं कि नॉन वायलेंस अहिंसा को वो मानते थे। मैं जिससे पहले आगे बढ़ूं तो आप एक गाना हमारे सुनने वालों को सुनाए जिससे कि एक और उनको थोड़ा भक्ति कोई गीत उनको प्रस्तुत करें तो फिर मैं आगे उनको गांधी जी के और विचारधाराओं के बारे में बताती हूँ।
0: जरूर, हम एक सुंदर सा गीत के ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत के और बात हम सब फिर जुड़ गए हैं। और अनुराधा जी, जो हम सबको महात्मा गांधी जो अपने और 1800 यानी कि 1869 में जन्म हुआ पोरबंदर और गुजरात में, और वहाँ पर भी आप जरूर जा कर के और उनका निवास स्थान को जो जहाँ पर उनका जन्म भी हुआ है वो एक म्यूजियम की तरह बना दिया गया है ना अनुराधा जी, और उसमें भी लोग जा कर के दर्शन कर सकते हैं ना
1: जी। आपने सही कहा संजय जी, गुजरात तो महात्मा गांधी का देश है और गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी गुजरात के ही रहने वाले हैं। वहां से कई महान लोगों का जन्म हुआ है गुजरात से, तो गुजरात का तो लोगों को, सूरनाम वाले लोगों को जब भारत भ्रमण करने जाएं, घूमने जाएं, तो उनको गुजरात तो अवश्य ही जाना चाहिए। और बहुत ही सुंदर प्रदेश है। तो चलिए, अभी गुजरात के बारे में तो हम बात करेंगे, पर गुजरात के वासी महात्मा गांधी जी के और थोड़े मूल्यों के बारे में मैं आगे सबको बताना चाहूंगी। अहिंसा के बारे में तो अभी मैंने बताया, नॉन वायलेंस। दूसरा जो वो बहुत जिस पर मानते थे वो है सच्चाई। गांधी जी ईमानदारी के बहुत बड़े अनुयायी थे, वो उस पर बहुत बड़ा विश्वास रखते थे। उन्होंने बताया था कि हमें अपने जीवन में सच्चा होना, हमेशा हमेशा सच्चा होना चाहिए। हमें सत्य को स्वीकार करने से भी कभी डरना नहीं चाहिए। उनके अनुसार अहिंसा को हम अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी चीज, देखिए आजकल के जीवन में लोग कहेंगे कि देखिए आजकल के ये ऐसा मुमकिन नहीं है, ये मुश्किल है कि हम ईमानदारी से काम लें या सच्चाई से। पर जीवन में अगर आप सच्चा अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो ये आपको ये अपनाने से, सच्चाई जीवन में हमेशा सत्य बोलें, ये हमेशा आपको एक अच्छे इंसान बनने में मदद करता है। और गांधी जी ने अपना पूरा जीवन लोगों के अधिकारों को दिलाने के लिए लगाया ताकि उन्हें न्याय मिल सके। इसे सत्य की लड़ाई के रूप में भी देखा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि सत्यता ईश्वर का ही एक दूसरा रूप है, दूसरा नाम है भगवान का। आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चाई अपनाएं, सच्चाई का रास्ता अपनाएं। इसी को हम कह सकते हैं कि दूसरा नाम है भगवान को स्मरण याद करने का। एक सच्चा जीवन जिसमें हम हमेशा सच्चाई महत्व दें। ये देखिए, ये बड़ी सरल चीजें हैं जो हम अपने जीवन में, ये नहीं कि पुराने जमाने की बात है, ये आज के जीवन में उतना ही है कि हम ये सब मूल्यों को अपनाएं अपने जीवन में, तो सच्चाई का बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरा वो कहते थे आत्मनिर्भरता। महात्मा गांधी ने हमारी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने हमेशा कहा कि हमें हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए, कि आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट, कि जिससे कि हम दूसरों पर ना निर्भर करके सब कुछ खुद करें अपने देश। और ये आज भी उतना ही जितना गांधी जी के समय में, ये उस समय हम कह सकते हैं महत्व इसका था, आज के जीवन में भी उतना ही महत्व है। और आज आप जानते होंगे भारत देश में मोदी जी भी इसी को उन्होंने महत्व दिया है कि आत्मनिर्भरता पर हर इंसान को, भारतीय को आत्मनिर्भर, भारत देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिससे कि हम दूसरे देशों में या दूसरे लोगों पर निर्भर ना रहकर हम अपने आप को खुद इतना ताकतवर बनाए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि जिससे कि हम किसी और पर निर्भर ना हो। और ये एक देश का ही नहीं, ये देश में, देश तो आत्मनिर्भर है बनेगा, तभी बनेगा जब वहां के रहने वाले

0: वहीं पर, क्योंकि हमारा देश चाहे कोई भी हो, भारत देश है चाहे सूरीनाम हो, हर इंसान जहां पर जिस देश में रहता है उसको आत्मनिर्भर जब बन जाएगा तो उसको बहुत बड़ी ताकत होती है संजय जी, कि इंसान खुद जब आत्मनिर्भर बन जाता है। और ये जो उन्होंने आत्मनिर्भरता का गांधी जी ने बताया था, वो चरखा के, आपने देखा होगा चरखा द्वारा खादी की कटाई की शिक्षा दी गई थी।
1: जरूर हमने हमने हमने जरूर वो चरखा का अवृतांत देखे है
0: जी, जिससे कि खादी, देखिए खादी तो कॉटन माने कॉटन की चीजें जो कपड़ा, कि खुद आप खादी का करें, चरखा चलाएं, और जिससे कि हम अपना वस्त्र जो कपड़े पहनते हैं वो खुद ही हम खुद बनाएं, जिससे कि हम किसी पर निर्भर ना होकर। और ये एक कपड़े की बात नहीं है, पर ये एक मूल्य है कि हम जीवन में आत्मनिर्भर बने, हम खुद अपना सब कुछ करना सीखें। ये रोज की जीवन में ये देखिए, हम किसी पर निर्भर ना होकर अपना काम भी स्वयं करें, ये इसको भी आत्मनिर्भरता कहते हैं। हम किसी पर डिपेंडेंट ना हो, किसी पर चाहे आप कोई भी उम्र के हो, पर अपना काम स्वयं करें, तो इसको भी एक आत्मनिर्भरता का ही कहा जाता है कि खुद आत्मनिर्भर है, और उससे आपको एक ताकत मिलती है, एक आत्मविश्वास आता है इंसान में। संजय जी, अभी तो मैं बहुत कुछ बताना चाहूंगी, पर उससे पहले एक और एक सुंदर सा गीत आप हमारे सुनने वालों को सुनाएं।
1: जरूर, हम एक प्लेयर पे एक दूसरा गीत रख देता हूँ, और सुनने वालों अभी हम सब फिर दोबारा आपके साथ जुड़ जाएंगे, जो संदेश महात्मा गांधी के अंतर्गत और अनुराधा जी जो भारत के रहने वाले हैं, भारत का संदेश सुनाते रहते हैं, तो अभी हम फिर दोबारा आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: वालों, जैसे कि अभी ये सुंदर सा गीत आपने सुने, और अनुराधा जी, महात्मा गांधी के अंतर्गत जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, दुनिया में कितने देशों में, यानी कि भारत के और कुछ 140 देशों में एम्बेसडर होते हैं, और सभी देशों में कुछ ना कुछ उन और दिवस के और किया जाता है। अनुराधा जी, और कौन सा संदेश हम सबके लिए आप रखने वाले हैं महात्मा गांधी जी के अंतर्गत?
1: जी, तो संजय जी, मैं सभी अपने सुनने वालों को आज गांधी जी के विषय में, उनके धारणा, उनकी क्या सिद्धांत थे, तो हमने अहिंसा और सच्चाई के बारे में बताया, तो एक और आत्मनिर्भरता के बारे में हमने बताया। ये भी मैं बताना चाहूंगी, तो महात्मा गांधी जी को ईश्वर में बड़ी गहरी आस्था थी, वो बहुत ईश्वर में बहुत ज्यादा को मानते थे। उन्होंने कहा था कि कभी भी किसी इंसान से नहीं बल्कि भगवान से डरना चाहिए, वह एक सर्वशक्तिमान है। इस बात की पहचान उनकी इन पंक्तियों में देखा जा सकता है कि उनका एक बड़ा प्रसिद्ध जो बोलते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सनुमति दे भगवान, जो कि ईश्वर ही सब कुछ है करने वाला। और दूसरा जो वो बहुत कहते थे कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। उनका वो कहना था, जो चीजें हमें अपने स्वयं के प्रयास से उपहार के रूप में मिलती हैं, वो चीजें केवल हमारे हक की होती हैं। गलत तरीके या अन्य अधिकारों के उपयोग से हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, वो चीजों हमारी नहीं होती हैं। वो चीजें चोरी की गई चीजों के समान होती हैं। हमें वो मानते थे कि हमें अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, और अपनी मेहनत से ही जो हम चीजें हासिल करें, वो ही उसी पर हमारा हक बनता है, ना कि हम कोई आसान तरीका अपनाएं और कहें ये है। तो वो इस पर बहुत विश्वास मानते थे। दूसरा, मानते थे कि हमें आत्म अनुशासन, हर इंसान को आत्म अनुशासन मतलब सेल्फ कंट्रोल बड़ा जरूरी है एक होना। उनका कहना था कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में सोच विचार कर लेना चाहिए। हम जो कुछ भी बोलते हैं और करते हैं, उस पर हमें उस पर उचित नियंत्रण होना चाहिए। हमें अपने अंदर इतनी क्षमता और क्षमताओं का एहसास होना चाहिए कि हम उसमें आत्म अनुशासन कर सकें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकें। एक आत्म अनुशासन करना मतलब रोज हम एक समय से हर चीज करें, और वो बहुत जरूरी है, अनुशासन जीवन में एक अनुशासन लाना कि क्या हम किस टाइम पर क्या करें, किस वक्त पर क्या करें, वो बहुत जरूरी होता है। कि आप सुबह ये करना है, योगा करना है, या आप मेडिटेशन करें, या अपना काम भी करें, सोए भी टाइम से सोएं, तो हर चीज का एक अनुशासन होना चाहिए। और एक और जो वो मानते थे गांधी जी का, एक मानते थे वो था समानता और भाईचारा, इसको हम कहेंगे ब्रदरहुड, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। ये आजकल के इस युग में भी बहुत माना जाता है, देखिए, इक्वालिटी और ब्रदरहुड, कि भेदभाव और अस्पृश्यता की प्रथा के खिलाफ आवाज उन्होंने उठाई थी। उन्होंने लोगों के हित की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने उनके अनुसार हम सभी ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, और इसीलिए सभी इंसान एक समान हैं। हमें कभी भी किसी के साथ जाति, पंथ या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। वह चाहते थे कि लोग एकता और भाईचारे के साथ रहें, आपस में सभी धर्मों का सम्मान करें। तो देखिए, ये कितनी अच्छी सुंदर उनकी विचारधारा थी कि हर धर्म का, हर जाति का एक समान सबको माने, सबकी सबको भाईचारे के हम अपनाएं और प्यार से अपना जीवन व्यतीत करें। ये मैं कहना चाहूंगी संजय जी, देखिए कितना सुंदर हमें जब पता चलता है कितनी सुंदर विचारधारा थी गांधी जी के, क्यों ना एक और एक गीत हो जाए और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम फिर उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे बाद में, पर उससे पहले आगे एक गाना एक गीत हो जाए।
0: सुनने वालों, एक गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद हम फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।

0: सुनने वाले यहाँ तक ये सुंदर सा गीत हम सब सुने, और कार्यक्रम जो आज दूसरा भाग के कार्यक्रम में जो अनुराधा जी और ये संदेश रख रहे हैं कि महात्मा गांधी का जो और दुनिया पे एक व्यक्ति जिसे लोग महात्मा जो 1818 नेहन शस्तक में जिनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर को, और जाकर आज तलक हम सब कितने देशों में उनके पुतला, कोई भी ऐसा देश नहीं है कि वहाँ उनका चित्र या पुतला नहीं है। अनुराधा जी, आगे का संदेश क्या है?
1: हम गांधी जी के बारे में थोड़ा सा काफी उनकी विचारधारा के बारे में बताया है मैंने अभी तक, तो थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ी सबको रोशनी डालना चाहूंगी। तो गांधी जी के नेतृत्व में विभिन्न अनेक प्रकार के स्वतंत्रता संग्राम और जन आंदोलन अहिंसा से जुड़े थे। वो सभी भयों को समाप्त करना चाहते थे और गांधी जी शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजों के की नफरत और उनकी हिंसा के लिए अहिंसा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने हिंसा के लिए अहिंसा, तो आपने समझा कि हिंसा के लिए अहिंसा का इस्तेमाल किया कि इंसान कितना भी हिंसक हो, पर वो उन्होंने हिंसा का प्रयोग ना करके अहिंसा का प्रयोग किया। हिंसक हमलों, अन्याय और विनाश की शांतिपूर्ण और हानि रहित प्रतिक्रिया की सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब सत्य का रास्ता, जहां पर हम हिंसा का प्रयोग ना करके हम अहिंसा का प्रयोग करेंगे, नॉन वायलेंस। तो वो इस पर बहुत विश्वास करते थे और यह उनका सत्याग्रह। उन्होंने इसको उपवास, जो कहते हैं फास्टिंग के तरीके, उपवास को अपनाया कि उसके तरीकों से, और कभी भी हिंसक तरीकों का इस्तेमाल नहीं करा। तो ये गांधी जी की महानता है, जिस पर 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे के तौर से अब दुनिया में, विश्व भर में ये मनाया जाता है, क्योंकि नॉन वायलेंस माने अहिंसा, तो नॉन वायलेंस डे अहिंसा। तो वो इस पर बहुत शांतिपूर्ण तरीकों से हम बहुत कुछ दुनिया में, विश्व भर में हम प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा गांधी के बारे में मैं अब ये निष्कर्ष में आना चाहूंगी, थोड़ा सा बस अब आपको बताना चाहूंगी फिर से। महात्मा गांधी एक राजनीतिक नेता थे और ईश्वर में बहुत विश्वास रखते थे, गलत काम नहीं किया। वह केवल जनता के नेता थे, उन्होंने मानवता की परवाह की और लोगों के साथ हो रहे अन्यायों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। सत्य और अहिंसा उनके महत्वपूर्ण हथियार थे। उनका कभी भी हिंसा का रास्ता लोगों को बताया कि नहीं अपनाओ। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी अपनाओ अपने जीवन में। वह एक महान समाज सुधारक थे। यही नैतिक मूल्य और सिद्धांत भी हमारे जीवन के लिए हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन हमें आज तक कराते हैं। गांधी जी के इन्हीं मूल सिद्धांतों पर अगर हम जीवन व्यतीत करें तो हम बहुत ही सुंदर एक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और ये आज के, मैं सोचती हूँ कि मेरे को सुनने वालों को शायद आज पक्का मेरे को है कि उनको अच्छा लगा होगा सुनकर गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में।
0: यहाँ तक जो हमारे साथ जुड़े रहे हमारे कोलेगा साथी अनुराधा जी,

आप सबने ही सुना गांधी जी के बारे में, उनके मूल विचारों पर हमने चर्चा करी, और मैं आशा करती हूँ कि हम सभी ने जीवन में उनकी कही हुई बातें, उनके विचारधाराओं को हम अपने जीवन में भी लाएं और ऐसा सरल और जीवन व्यतीत करें जहाँ पर भाईचारा हो।

दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है। लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों।

के कार्यक्रम में हमारे साथ देने वाले जो हमारे आचार्य सूरज देव जी करगोपुर भारत से, और हमारे साथ अनुराधा जी जो स्टूडियो से और हमें सहयोग दिए। और मैं हूँ आपका सेवक संजय, नाम तो सुने होंगे, और हम यही आशा रखते हैं कि कुछ ना कुछ संदेश आप तक पहुँचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को हार्दिक से नमस्कार।

रोशन के साथ पर रवि साहब और लता जी मिल के आपको ये गीत सुनाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत है। तो अगर जो आपका हृदय से स्वागत है तो लीजिए, आपको ये गीत से हम आप स्वागत करते हैं। इस तरह से लता जी।

पिया बोले होले होले। आपने तीन आवाज़ सुने, सैफ अली खान की, सोनू निगम और लता जी की। ये तीनों मिलके आपको सुनाए हैं, ये शानदार गीत हमने पेश किए। ओपी नैयर के साथ पर कश्मीर की कली, रफी साहब।

किसी न किसी से कहीं न कहीं कभी न कभी ओपन एयर के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये शानदार गीत फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

0: महेंद्र कपूर जी,
1: ये शानदार दिवस में आपको सुनाए लता जी के साथ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आकाश पे दो तारे सदियों से चमकते हैं। चलिए, ये गीत के बाद हम आपको सुना रहे हैं, ये गीत इस तरह से आ रहा है।

ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत फिल्म दिल ने फिर याद किया 1900 देखूं तो नहीं 1966 का ये गीत, और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज गोल्ड मेडल लेना
0: है। अरे
2: क्यों? तुझसे नाराज जिंदगी अनूप घोषाल आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

अगर दिल किसी से लगाया ना होता, रवि साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाएं चित्रगुप्त के साज पर। नेखंतीन एन शस्त्र का ये फिल्म है और हमने पेश की फिल्म बड़ा आदमी से निकाल कर। चलो देखते हैं अगला गीत क्या ख्याल है, अगर जो मैं आपको सुनाऊं, सोनू निगम, साजिद और सुनिधि चौहान, ये तीनों मिलकर क्या कमाल करते हैं।

मारिया मारिया साजिद सोनू निगम और सुनिधि चौहान मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत इस तरह से हमने पेश की।

फिल्म लव स्टोरी में से निकाले, हमने ये गीत और पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आपको एक शुभ, सभी शुभ हम पेश किया जा रहा है। चलो हमको सुनाते हैं ये गीत इस तरह से।

न झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएगी। ये शानदार गीत चला हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। इस गीत के पीछे एक राज है, एक कहानी है, लेकिन कभी फिर बता देंगे, इसे हम याद रखेंगे, शायद आप भूल जाएं, लेकिन कभी भी अगर ये गीत मैं चलाऊंगा तो इसकी कहानी आपको अवश्य बता दूंगा। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है हम आपको ये गीत सुनाते हैं।

ये हाथों में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल भर में

0: में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की चास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम
1: ये वाकई आपने सुने बड़े मियाँ दीवाने हैं। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं इस तरह से, देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

खान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, वो ये है

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है। तो लीजिए आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब आशा जी और कोरस, क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है।

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है, याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें एक प्यार कर दे है, करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और पेश कर रहे हैं इस तरह से रवि साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और माई तू मुकेश द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, लेकिन तीन सस्तख 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। किशोर कुमार।

एवरग्रीन किशोर कुमार जी, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर।

आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो फॉर बिड्रेव अमालिया. सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-9339. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf A.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: तो लीजिए अगला गीत हम चल आपको सुनाने वाले हैं। क्या ख्याल है ये, इस तरह से फिल्म आओ प्यार करें।

लता जी की इस गाने पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जी हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा और चलाऊँगा ये गीत। फिल्म ये रात फिर ना आएगी निकली शस्त्र को 1966 का ये गीत। जी हाँ, सुनिए महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

मेरा प्यार वो है महेंद्र कपूर जी की आवाज में अपनी सभी छाएं उन्होंने रख दी। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी नीगति शस्त्र 1966 का ये गीत ओपेन नैयर के साज पर हमने पेश किए। लीजिए प्लेयर में एक गीत हमने और रखे है मैथिली मुकेश जी का, पता नहीं बहुत दिन हुए होंगे आप ये गीत शायद सुने हैं, मैं भी बहुत दिनों बाद ये गीत चला रहा हूँ, ये भी हो सकता है आपने हाल ही में सुने होंगे, तो मेरा बदनसीबी है, वरना लीजिए मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुना रहा है।

मैं मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस अगर सैड सॉन्ग हो तो मुकेश जी तो गम का दरिया है। और ये गीत हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म अप्रैल फुल में से नहीं गई फिर ऐसे 1964 का ये गीत लता दी शंकर जय किशन के साथ।

टून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, अब वो ये है, कभी कभी आप कहीं जलसे में जाते हैं यानी नेवता में जाते हैं, कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो, को शुशु शुशु बात करता है यानी छुपके छुपा के, तो इसके बारे में भी बॉलीवुड ने एक गीत बनाए हैं। चलिए वही गीत हम आपको सुनाते हैं। आशा जी आपको सुना रही है कि लोग कभी कभी शुशु शुशु करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, कानों में बात करते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं, जिसे कहते हैं काना फुसकी।

0: 叔叔，
1: 叔叔。

धीरे धीरे बोलो जी, नाचते नाचते आप शायद थक गए होंगे। जी हाँ, मुमकिन है थक गए होंगे, तो लीजिए मैं आपको थोड़ी देर आराम देता हूँ।

हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर ये गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। हमने पेश की मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी फिल्म एक बेचारा में से निकाल कर निकली तुई सैफ तक का ये गीत। चलिए अगला गीत है और वो गीत है नतीजा हमारी मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है?

ये तुम भी ना सोचो, ये हम भी ना सोचे, मैथ मुकेश और आशा जी मिलके आपको गीत ये सुनाए ओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं, इस तरह से आ रहा है।

छाई बरखा बहार आंगना फुहार नीगती निग्न से स्थ आशा जी और जी लता आशा और लता मिल के गाए हैं फिल्म चिराग में से निकाल कर निकलती निग्न शस्त्र 1969 का ये गीत हमने पेश की मदन मोहन के साज पर। चलिए मदन मोहन जी के बाद हम पेश कर रहे शंकर जय किशन, क्या शंकर जय किशन इस तरह से।

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओ

0: लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं सुनो तो बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए पहले जरा आप मुस्कुराइए पहले जरा आप

आप यहाँ आए किस लिए? वादे तो बहुत लिए लेकिन करना पड़ेगा जरूर, तो अवश्य करेंगे। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और ये गीत इस तरह से है।

गांधीवान ने झूम के माइत मुकेश की आवाज में आपको सुनाया गया ये गीत। तो चलिए ये बदली हुई गीत हम रखते हैं। हाँ

ये कश्मीर है, ये शानदार गीत आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है।

सदियों पुरानी अपनी कहानी और रवि साहब और आयशा जी आपको सुनाए रवि के साथ पर फिल्म शहनाई में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए। चलिए अगर नंबर प्लेयर में ये गीत रखे हैं, इस तरह से सुनते हैं।

दिल से दिल की डोर बांधे ये शानदार गीत चला ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इस तरह से आ रहा है आपकी मांगी हुई गीत।

रफ़ी साहब का ये गीत है चांद की अंगड़ाई। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

मैं आशिक हूँ बहारों का, मैत मुकेश। मुकेश जी आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप भी हैं, आप सुन रहे हैं और मैं दनाख में स्टूडियो में बैठकर चला रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए ये गीत। लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन के गाना बहुत कम चलता है। अपने हुए पराये में से निकली फिर सस्त लता जी और सुबीर सेन जी।

लता जी और सुबीर सेन मिलकर ये दोनों ये द्वैत आपको सुनाए हैं। फिल्म अपने हुए पराये में से निकाल कर हमने चलाए हैं निकती फिर सस्त का ये गीत है शंकर जय किशन के साज पर। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं कि प्यार में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक कि डफली वाला भी बन जाते हैं लोग।

डफली वाले डफली बजा, ये गीत सुनाया गया, हमने पेश की ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और ऐसे आ रहा है, हाँ इस तरह से है।

फिल्म भीगी रात में से निकाले हैं निकिती फैफन सस्तिक के ये गीत है रोशन के साथ पर रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में हमने पेश किए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो है मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है

मुझसे भी खफा रहना, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। चलिए ये गीत तो सुनाए बिना हम आपको नहीं जाएंगे।

महेंद्र कपूर जी और लता जी मिल के आपको सुनाएं ये प्यारा गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म घर बसा के देखो में से हमने निकाल कर ये चलाए हैं।

0: कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, रफी साहब की आवाज में ये गीत हम आपको सुनाए।
1: De beste Bollywood hits van toen en nu bij Vahon Hindustani Radio.
2: Oh

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरी आदाब, शास्त्रीय काले। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा ये मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों हम तुरंत चलते हैं, और कहां चलते हैं, हम चलते हैं सूरीनाम की ओर और फेहापेई की ओर। फेहापेई की ओर यानी कि वहां पर अब फेहापेई की बस्ती जो है हमारे जनता जोर तोर से काम कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं यानी कि फोर सीटर चुनने को। तो इसके बारे में फेहापेई का पार्लियामेंटेरियन है और वो है मुफराव कृष्णा मथुरा। वो बोले हैं इस बर्रई थे फोर सीटर्स का फंड फेहापेई तो ओवर वीकन indien zij vanuit de partij en verschillende structuren wordt gevraagd zich kandidaat te stellen. Bolle op bereid hij voorzitterschap lewike. Bolle jeb oké VHP ke kandidaat. Bolle stem kari tap wan up stem huiga. Kike voorzitter bani VHP ke. Bolle belangrijk huiga. कि बोले जितना स्ट्रक्चरन है एन बरूप दून बोले जालिक है ओवर वीकन दल सालिक ना देंगन। इस बात मथुरा बोली से, और मथुरा बोले है फोलखंड यार आने वाला साल में मई में फेहापेई के बस्तूर फर किसिंग होगा मई महीना में आने वाला साल 2027 में हुई। तो बोले है इर्दर दित यार बोले और फोर्सेटर तो लोन जानो है चांस तो कि उसका और दिवस प्लोसिंग ऊपर लेडे में से और बताए गए है जहां पे हम लोग के फोर्सेटर्स का वार्निमस तैलक ग्लेन Ullers aan te wijzen als voorzitter. Om Mathura gelooft er in ieder geval wel ki VHP ego jabberjust ego sterker leider van kiezen kariga. Op bole hega VHP bole bahut stabiel hai, sterk hega. Bole als weer een sterke leider zullen hebben. Hoofdbestuur betaalde VHP ke, ki bole 76 jaar VHP ke bestand hai. Aw bole VHP bole doormaak in de samenleving bole narm garam ooch neech bole sab hum log mee maak kar chukli baati. Aw bole VHP uiteindelijk ego sterker terugkom bole phin se terug aaye. Ekar bare mein onder voorzitter jo hai VHP ke Asis Kumar Gayadin, wo bole hega binnen de partij zijn die bij hem aandringen die bolle hem bij voorzitterschap bolle kie kandidaat aanstel kere kui bolle tenzij je sab kui hem kiezen kere tam waardoor hij bezig is een goed team te zoeken voordat het eventueel zo een stap zet. Aur hoofdverstuurske lid Mahinder Gayadin u safa bolle hai bolle hem juist mangila ki purana minister jo Ganesh Kumar Kanhai bolle als een geschikte kandidaat bolle hoe partijleider ke. Op bolle hega volgens hem beschik kan hij over een goed CV, kent hij de VHP van binnenuit en zou zijn verkiezing geen slechte keuze zijn. Toen ik er bare mee op de co-voorzitterschap mee mee, hoe ga verkiezing? VHP ke ab ke voorzitter banega aur bolega het volk en dat heb ik mijn hele leven gedaan. Bole 45 jaren dien ik samenleven al en ik zal blijven dienen vanuit elke functie. Aur ibaat bole he Mathura bole he Uttaradin se bole hum baati. To ye baatchit hai VHP ke ontwikkeling ke bare mein aap log ko hum boli थोड़ा से बताए दे भैया सूरीनाम देश में यहाँ तो हॉलैंड में जगह जगह है। सूरीनाम देश में तो भी वहाँ पर भैया फ्लिट्स पार्लर लगल है चारों बगल, और फ्लिट्स पार्लर भैया जाने कमरा मस्त है। एगो ओ तो जाए के कमरा मस्त हुए में मार दी भैया, ये बात तो कभी न्यूज में हम ना पढ़ ली है। पाल तो काटे है बाकी जहाँ पे कैमरा धरल है मस्तवा उही में जाए के ओ एगो ओ तो भिड़ा दी भैया सेफ्टी सिटी कैमरा मास बस्तू द खवान एंड फूड तो एक इस नतीलक स्वार बस खादक में से एगो बहुत सिंग भैल है
अब तावे 16 तारीख अगस्तस के अतवार के एको सेफ सिटीज कैमरा मस्त है अंतोन द्रख्तर वेग बोनी स्ट्रैट में ओए मेगो 48 यार के आदमी जाए के बिको स्ट्रैट से निकले सेंट्रम से जाए के कैमरा मस्त में मार दे भैया तो ओके खा तो अब बवेस खोजे के ना है वत हुआ पे सब लिखल है अप लेवल है कि कैसे भैया जाए के और भीड़ का आंधी से अपन ओ तो इन से रखा अरे इनिंग भाई ये बातचीत हो रहा है हमारा सुरिनाम में पीके के तुलन जाने भैया अक्तिफे से पीके चल गए पहले रहा एनडीपी में एनडीपी से चल गए हैगा अब बप में अब बड़ा बात बोले हैं सिमोन के रखेरिंग सिमोन के बोले उस सब कुछ ना देसवा बोले बनाई पाई से कई हार्ड बोल से रखी जिमोन के बोले खाली पोप के हिया से हुआ घसकावे है जाने तो जैसे स्काकबोर्ड पे बहुत बोले रहा ऐसे बोले खाली पोप के हिया से हुआ घसकावे है अले पोप सेंशन विश फॉर द रेस बोले उस सब देश हमें कुछ ना करे हैं रखे रिंग रिसलान के और सिमोन के बोले है एक बरिस उस सब हो गए है और बोले एक कोचित नफरान नौलिक्स बोले हम लोग अपर पटमुनी में मेरक कर पाइला बोले रास्ता रास्ता सफा हुए है दाम उम तरी बने हैं बोले दस वेल नि शख बोले उल्लांटी के काम ही करे के बोले बाकी ओंतविकलिंग देसुआ में एक को बुन न लाए से बोले फ्रॉइड खांग जोन हम लोग के सलार से दुकान में जोन प्राइस से बस्तांद सीकर है थे कंसर्न फॉर ब्यूरोक्रेसी नाम ये is daar zit hij volgens eigen zeggen wil geen wenselijke verbetering. तो पीके एक बारे में बोले दोस्तों बोले हैं रखेरिंग बोले कुछ ना करे है बोले स्टेफर चेस फॉर विसलन अंदर पॉलिटिक फुकुरन सेटर ऑफ द पोस्ट इंटरवेल बोले वही पुराना कल्चर बोले वही मशीनिया चले है बोले बवेर करे है बोले पॉलिटिसी एंड पॉलिटिक्स स्पॉन्सर टेन खुद कोमन इन प्लस वन रेक्स रेज द बफोल्किंग मां बोले इको फरंदरिंग ना है Coalitie krijgt langs Piqué, stelde minister in praktijk. Eerst partijbelangen, bole appen partijbelangen, bole regering wakker he. Maar bole janta ke belang me bole usap huana baitale. Pahle okar partij ke admi ke chahi. यानी कि फोर्डील बनावे के द खसंत है सड़क एंड अंडरवेज बोले हैगा जेनिफर सिमोंस के बोले है ग्रोथ टेस्टन मिशी काबा फॉर्क्स फसंत है के जो मिनिस्टर है सेल्फ एन फॉर द ग्रोस्ट ब्लंडर बार रखेरिंग के भैया मिशी काबा के जो पास्टर है और नाचत आयल है उसेर में और के सबन मिनिस्टर डायरेक्ट बना दी से भैया अब बोले एक वार्ता होकर बोले अंडरवेज फॉल्स gezondheid, gezondheidszorg, bolle niet stevig op orde worden gebracht, bolle hij spreekt daarvan van een valse start. Simon Desloot moet reshuffle, bolle zelf Simon's ke jahe nikar jahe ke, ook ke jahe zelf reshuffle hoi ke. Piqué bolle he, bolle regering zich ek berisse bolle usse buitel he, au bolle beer beer appen probleem wa ghaskawe he, vorige regering jahe ke luka he ke usse चीज करी से बोले हम लोग जो एरफ कर ली बोले वही के से नरी दरी ने इस सिंपल वी कंपाइन फूड एंड बलूफ दैट बेटर टू डू वेट फॉर ऑफ वेल का प्रॉब्लम एर लिखन द कीसर्स हैव द न्यू मैक्ट हैव जस गेस्कोवन ऑन द पेन होप ऑफ द रेमन अखतरा ब्लेवन फर्टेलर वर अलमाल फॉल्ट वाज बाय द फॉरगर रेगिंग और घसकावे की संतो की ब्रिसवाई के रेगिंग प्रॉब्लम वा करी से और बोले तू जल Lele politieke, dan moet je toch weten wat je allemaal staat te doen, Jano, bijna. और फुटबॉलर्स गैला भैया नीदरलैंड से और देश सुरीनाम में और सबके मिलल रहा डायस्पोरा के सुरीनाम से पासपोर्ट मिलल रहा तो यहाँ पासपोर्ट क्वेश्चन फॉर द डायस्पोरा फुटबॉल कान देश बे स्टार्स बसलेट खरीगल्ड वार्डन वन सिमोन बोले पासपोर्ट तो सब इंटरेक्ट चाहिए हुए के और बोले बलवा तो दोनों ही गए तो ये सब खिलवाड़ करे है पासपोर्ट से भैया बोले हु फॉर द वेट नेशनल है
overheid. Bolle 14 augustus 2026 tijdens vervolgbespreking commissie naturalisatie van Nationale Assemblée DNA. Ik erbaar mee wat ja heen. Bolle de SVB is gevraagd de voorgestelde wijziging te verwerken zodat het concept van de wet op korte termijn kan worden ingediend. Dus toe. De jebante voetballers ke baremi.

तो दोस्तों अब देखो, एक फिल्म प्रोड्यूसेंट है जिकर नाम है लेस्ली या फिल्म रोदनी रोटनी लाइसनर सोनी मेंज रोड

Napaise se dringend beroep karega om aan het publiek om uit te kijken naar de man ki kaha hai dosto ओके सब खोजे है बफोंट लाइसनी सातरदा के रात के शर्मा का गए लहा फोर अन वर्क ओफल है और बोले दैट इज द लास्ट प्लग वर है फोर सो फेयर बकेंट इस कजीन ओकर बात में बोलो कर टेलीफोन है कोई ना उठा ना उठावे है बोले सुंदर सुतान ओकर औरत लड़कन फैमिली कोली का सब ओके खोजे है। तो दोस्तों अगर ये आपको मालूम है तो आप इकर बारे में जरूर जरूर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए इस सिपाही से। तो ये बात है एक नीदरलैंड से फिल्म प्रोड्यूसर के बारे में हम आपको बताते हैं। एक लाश मिला है दोस्तों, एक लेक मिला है, एक लेक मिला है या बता रहा है ब्रुइनन डालवेग में। ब्रुइनन डालवेग में एगो मलाई के नाम है दोस्तों, 58 यार का रामोन केर्तो दी क्रोमो। तो एक लाश लेक मिलल है सवेरे सवेरे भैया अबेत हीफ आन खत्रोखन ओकर भाई गए लेते की से केर्तो दी क्रोमो सोंदाख नो खसीन अबे अत्वार के ओके बोले हम दिखली है अब ओकर लाश जाए के लाइक मिलल है और बोले हैगा अर्स हाथ ट्वेफल्स ओवर नतुलक दोत स्ट्राफ दोत ओरसाक बोले है। Hij constateerde onder meer blauwe plekken op het lichaam en bloed dat uit de neus kwam. Terwijl een natuurlijke dood na hij, ook er naak me se khun bhayal hai, aur ook er dehi me blauwe plekken hai. Te ek er bane me forensische opsporing dienst in schakel bhayal hai. Bij de onderzoek werden vooralsnog bole in braak gharwa mein na bhayal hai. Bole letsel op het lichaam zijn vastgesteld aur bole beslag genomen. De zaak is aur bhaiya te pata milal hai. एक नतुरक दूध से न मरल है। अब देखो भैया को नवा देना खबाऊ है, हाँ ये नौका देना खबाऊ है। ये है भैया और नेशनल असेंबली के एगो मीडियो हैंक आरोनस्ट्रात में, हैंक आरोनस्ट्रात में वो नवा देना खबाऊ है, न्यू देना खबाऊ है। तो हूँ आप एगो निगम फिर तक यार के आदमी काम करत रहा उतरे में भैया उन नौका देना खबाऊ में काम अदमिया गिर गए और सब एक ले गए भाई और ई अदमिया ई अदमी जो निगम फिर तक यार के है ये भैया अपना दम को थोड़ दिया है। तो ये बड़ा दुख की बात है, काम करते में बेचारा गिरल है और ये आदमी मर गया है दोस्तों। अब देखो भैया बोमा वेख के बातचीत है, संतो बोमा के बात है। एगो 19 बरिस के आदमी यानी कि निखन तीन यार के एगो प्रोफेसर हैगा प्लॉट सेलिंग भैया। अब एगो बेस आई को बोमा वेख में बोले तैदन से केरन बोमा वेख में एगो बेस ओके मारी से और ये लुंडा निखन तीन यार बाल गोबीन डीफेंस बाल गोबीन और अपना आंद्रे डेंग भाई ले भैया और बोले द यंग मान बोले ई अतवार के दुई मिला से प्रोफिस पे जात रहा और बोले एगो त्यूता हिशाई फिशर रहा और बताए गए है बाल गोबीन ओवर बोमा में खरीद इन द रिक्टिंग फॉर मोहम्मद रशीद पीर खान वे तेर होते एगो पांत लगे बोले हैगा वर्मुडलक रेक्स वार्स्ते और स्टीर बवेकिंग हैवन खमाग ओम ते केरन इसे मांगेश घुमावे और तैदन देशे मनुफ्रे क्वाम अद ब्रोंफिसन इन बोचिंग मेत्र एगो ओतो ओइचिस आवता इसे ना ख्याल करी से दोर 20 यारख दोर द हार्द क्लाब ली द बाल को भी एरस्ट कलेंसल ओप और बोले है ओवरलीट में से यमर 29 यारख लुंडा के देहांत हो गया है। बहुत दुख के बात है। बोले श्री राम से रही बेस फरकीर्द तय दिन फन आंद्रे ने नीट ऑन द इन्फ्लुएंस जोन विश्व चलावत रहा उदारू ना पिलेरा भैया और बेचारा
के ध्यान तो बहुत अरेडिंग हुए ब्रोफी से भाई।

और जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया। तो दोस्तों, तो हम चलते हैं और आगे को अपन समाचार को लेकर हम तुरंत चलते हैं निकेरी की ओर। दोस्तों, वहाँ पे निकेरी में, निकेरी की ओर हम आप लोग को लेकर चलेंगे। तो निकेरी के जोन देसी है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से निशा कुर्बान बब्बू, निशा कुर्बान बब्बू देसी है निकेरी के। और उमांगे हैगा निकेरी में और काम होवे मेयर वेरक माकर फन बेहतर वीकन रास्ता जोन है बोला और बेहतर चाहे होवे के। और बोले जोन यंगरे है उस सबके काम भी चाहे मिले के, वेरा खलीखन है भी चाहे होवे के। बोले जो हाइस फेस्टिंग है बोले राइस सेक्टर के ऑन्टविकलिंग बोले सब चाहे फॉर बेहतर होवे के। बोले फोकस हार इस हिन एंकल सामे लीफे ओइ 100% ऑफ एंड मुतर ओवरहेड instances en burgers gezamenlijk blijven werken aan de vooruitgang. तो इस सब चीज तो बड़ा बढ़िया देसी सोचे है। और अब सोचे तो बाटो तो अब चाहेगा देसी के करे के। कुर्बान बब्बू बोले है बोले आद शांत वेखन मुतर ओक आन खपाक्त वर्दन बोले वेखन ऑथोरिटेकन वर्क इन मेडिस इन फर्किल ट्रायक्टन। और बोले है गा कुर्बान बब्बू बोले है देसी बोले ना दुखरक विल इन सेटर फॉर यंगरन। और बोले फोकस हार मुतर बोले मेर बानन और वेर खरीगन है चाहे हुए के निकेरी में। स्लाइस जोन है भैया बोले बलांगरेक फॉर राइस सेक्टोरन। कुर्बान बब्बू बोले है बोले बलांगरेक प्रियोरिटी थेगा जोन स्लाइस है चाउर के जोन धान आदमी बोवे है ओके सब रीनो फेर करे के। बोले दृंगत हेयर स्टाइल नो उदक है नो सेक्टर फर्दर कुनन ओंतविकलन। तो बड़ा अच्छा बात है। तो यहाँ पे बताए गए है बोले है बब्बू बोले है कुर्बान बब्बू बोले है बोले ऑफ द अखेंडा ऑफ द मार्क इज फॉल्स आंध्र इनोवासी तो जो बाजार है वो चाहे रिनो फेयर करे के। बोले द आंध्र कनाल पॉइंट इज द कोर्ट ऑन फक मेंशन फक मैन से बोले बहुत कमती है बोले जो बहु में बा अब रेस सेक्टर इन इंस्ट्रक्टर दान आरबेस क्राफ्टन फॉल्स डीसी मुइलक इस तो फिंडन। कुर्बान बब्बू बोले है बना दृक्त दैट दिस नीड अलेन इन निकेरी स्पेल मार अन लैंड के प्रॉब्लम इज मेड दैट फॉर वर्डन बुटलांसे आरबेस क्राफ्टन आंगेट्रोकन और डीसी रूप द सामलेवन ओ मिंदर एनर्जी टू स्टेकन इन नेगेटिविटी एंड अफब्रेकन फन एल्कार एंड क्रिटिक इज फॉलोड एक बब्बू यानी डीसी heeft een goede gevolgen mensen. Alleen als hij waar kan maken. Paiswa hei kina hei mevrouw. DDC daar gaat het om. Dat gaat het om mensen. En meer niet. Dus dat is de zaak een beetje. अब देखा जाए भैया हिया बतावे त्रिम कोर हम तरी जाए बैतलान के चीवा बताई त्रिम खराब ओवर अनेक्साक्सी स्ट्राट फॉर हॉर्मोन्स ना नीदला फन ईरान। हाँ अमेरिका बोले है तुलन जाने स्ट्राट हॉर्मोन्स के बारे में जहां सब बोर्ड पास हुए है बोले उखरोन खबितवा जो ने बोले चाहे अमेरिका के हो जाए के अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोले है बोले है वेल फरक्लारन ना दैट ईरान इज वर्सलागन है डीड ऑपमर्कलिक उपस्प्राक फ्रागन टाइडेंस बाय इनकोस बाय इन पुलिसी अकादमी इन अमेरिका न्यूयॉर्क में द हुगो फेशनारिस फन Witte Huis verklaarde later tegenover Amerika dat Trump een grap maakte en dat er geen plannen
voor een dergelijke stap zijn besproken. Bole us grap karat raha ki hormus okar ho jayega Amerika ke. Bole sai to droom hui te mu mase nikarenge hui bhaiya tulun jano hai. Use pasar Groenland me go bedrijf se hua tel khode hai. En dat mag ook niet mensen nadat we Iran hebben verklagen dat een zware nederlaag lijkt. Zal ik de straat van Hormuz binnenkort Amerika's grondgebied verklaren? Zei Trump. Daarna voegde hij ernaartoe. Het is echt waar. Trump herhaalde ook zijn eerdere bewering. Ki Amerika bole Amerikaanse maritieme blokkade waarmee de scheepvaart verkeert. Iranke haven mee wordt tegengehouden. Iran beslist dat de VS de controle over de straat van Hormuz hebben. Bole het scheepvaartverkeer is door de zeestaat sterk teruggelopen. Hormuz is van groot belang voor de internationale energiehandel. Op het eigen conflict passeren ongeveer vijfde van de wereldwijde olievoorziening via deze route. Op het eigen nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Washington voert ondertussen ook de economische druk op Teheran. Verderop, Amerikaanse minister Financiën ke bole week nieuwe maatregelen tegen Iran zal aankondigen. Volgens hem gaat het om stappen die het land economisch nog verder te isoleren. Mensen te Trump abbe bezig Iran ke bare me. Hamari janta en wij lijden eronder om de dure benzine, de dure brandstof te gaan betalen, mensen. Abbe de ko Suriname me Arman Sunder mange he loonsverhoging. De regering in Suriname onderhandel kreeg loonsverhoging ke bare me go vakbeweging hega Rafaksuur. To Arman Sunder John hega woordvoerder de Rafaksuur se mange he loonsverhoging van 25% lanti se. Maar lanti bole he bole hem toke 25 na de. Maar 10% ambtenaren salarissen structuur met 10% aan te passen. O bole hega vakbeweken bole he. Bole hega zo werd voorgesteld om de belastingvrije grens te verhogen naar 9000 naar 15000. Want heb je toch een nieuw jaar te toch je een belasting bereken, te bole ook een grens te verhogen weken 15000. Volgens Sunder is dit voorstel op dit moment niet aan de orde bij de regering. Dat werd hen tijdens de vergadering afgelopen week meegedeeld. Bole uhamlo abenakar sakila. Bole er is geen sprake van de verhoging. Ja, hoi bhaiya. Ta haan to dal lage ki kursua chari. Maar ab dekho regering bole hem toke 10% debe. Lanti ke kam kartan ki verhoging. Aur hi mange hai 25%. Beste luisteraars, toe je maat he. Sunder ke ab dekho bhaiya. Colombia me aardbeving bhail he. आप लोग को तो इकर बारे में हम बताई है कितना लोग वहां पे मरल है 280 मेंशन है बदलीफ दार मेंशन और बतावे हैगा अन आरबीफिंग वा 7.4 kostte 280 mensen het leven, bijna 27 gargirge he, verwoest hoege he, saharkane, barka rasta, sab tutke saka hoege he, jaisi go rastak namra Gali en Pereira, bole miljarden schade deswame bhaiya, Colombia ke minister joan he, bole he, बहुत कृतिक पाई से बीते हुए हफ्ता में और बोलेगा कराइबी से स्ट्रान जो रहा आंतर इलेक्शन बोलेगा वी कैन बिल्ड द फर्स्ट किन वार ऑफ द सीन इज
dat hij op de Caribische strand aan het relaxen was. En bole ook op kritiek. En bole dis me hier hem loke itra admi maral he. Sab ghar bhi gir ge he. Aur jo ne minister jo un ghar ke bare mein jo hai festing ki. Jika naam hai Jim Andres Beltran. O jai ke strand pe relax kare he. Ekar bare mein oppositie, links oppositie. Ego moosie van wantrouwen. Regering me indien kari se. Kritiek moment besloot vakantie te vieren. Bole itra kritiek he. Bole minister van volksgezondheid ke. Huisvesting ke bole gele vakantie vieren kare. Bole bericht op X schreef de minister dat hij niet op vakantie was. Ik wil een paar uur doorbrengen met mijn vrouw en kinderen. Die ik al enkele dagen niet had gezien. Bole Cairo tjoeiga van oude landen ke bole nadekeri. Bole ohik mare bole hem. Bole usab ke dekhat maarte. Shakira he so marke. Financiële steun toegezegd voor wederopbouw schoolien en beschadigd bij hem. Amerika filantroop Howard Buffalt, het zwaar getroffen departement Kokomeba, ja Afro-Colombiaanse oorspronkelijke gemeenschap woorden, Colombia met hun caprilon hoare. Ook er gemeenschap mee 2800 school beschadigd bij hen. Zo komen mensen op het eigen schoolje. Ja, hij is verbouwd geweest. Ik heb er mee. Sakira aan de journalisten wat jij zei. Je maar 1 miljoen dollar of 865.000 euro. Toegezegd, Colombiaanse zangeres ego he, bole otra paisa toke hem debe. Colombiaanse zangeres zei dat ik 1 miljoen dollar was toegezegd voor de wederopbouw. Het geld zal naar de verwachting worden gebruikt voor het repareren van de beschadigde scholen. Kebare me naki, ghar me dharie paiswa. Kono zangeres ewa ja miljonair he, to 1 miljoen diga. स्कूलिया के बनावे के बारे में हमारी जनता तो आप लोग को बताइए भैया एसएलएम के बारे में बड़ा क्रिटिक है एसएलएम के बारे में एसएलएम रिएक्ट करिएगा और ब्रेक ओवर खाओस samenstelling en functie van de RVC volgens de directie is dat ongewijzigd. SLM kebare me. Oh, SLM Surinaamse RVC via raad van commissaris doen bole he. Bole hega. Aanleiding voor de reactie. Bole hega. Online publicatie hega. Sora tarike doen ware tijd dharise. Bole hega. Chaos raad van commissaris SLM me. Oh, bole hega. Naar de aanleiding daarvan bole directie bole gezamenlijk kennis te nemen van een bericht geven of bole ook de functie binnen de raad zijn volgende maatschappij bole kuchna verander bhail hai to bari lamba chowda SLM ke baare mein likha gaya hai hamari janta to hum boli aapko kuch chota roop mein aapko bata de bhaiya 9 aadmi ke Suriname desh mein 9 verdachten veroordeeld in zaak vermissing van 2 mannen doe je ermee laatst bij le ook er bare mein bhaiya 9 aadmi ke saban pakdi se बतावे गरी से पड़का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्कूलन ते हैवन खमाक आन देनाम आन एन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन फॉरबरेडिंग हैंडलन मेट बत्रेकिंग ऑफ द वेट फन फरडोवेंड मिडलन uitvoeren van cocaïne of een poging daartoe dan wel hen aanwezig hebben van cocaïne te oeën 50 jaar mangen he aanbariske jal mangen he to isabke bhaiya jal milal he to jaise rahega iske baare mein aur aage bataenge bahut bahut lamba chauda iske baare mein bataye gaye hain jo aap log ko hum छोटा रूप में बताएंगे हम जाते हैं अफ्रीका के ओर भैया कोंगो में हम जा रहे हैं तुरुआ पे बहुत बड़ा बीमारी है चलल है एम्बोला के बारे में आप लोग जानो हैं कोंगो में है दो लक्ष ओइट इन हिट लाउंड इतना आदमी न मरल रहा और देखता जनता अब की मरल है भैया और ये बात है रिपब्लिक कोंगो में बोले 2325 आदमी
mensen zijn leven gekost. Ebola is dodelijk in de geschiedenis door Amerika, Afrikaanse landen. Congolese autoriteiten willen 4945 en meer besmet bijl. En die dodendag inmiddels hoger dan 2018 of 2020 meer. Oesemepe 2299 mensen, maar Allah op het aanwezig daarmee dodelijkse Congo ooit heeft meegemaakt. Abole abki aur jana maral hai dosto. To iske baare mein bhi bahut lamba hai. Aap log ke hum mul mulle baat batate hai ki itra janta maral hai. Aur wo hai Congo mein hamare pyare pyare janta jo ek bimari hai. Ebola सब बोले हैं हमारे जनता तो हम चलते हैं और आगे को अपना सूरीनाम के समाचार को लेकर भैया वोनन ऑफेड वाटर नीदरलैंड के बातचीत है इस नित खुद को जानो यहाँ नीदरलैंड में चलियो तरीबा में मतलब पानी में बोट है वो उन बहुत जहाँ आदमी रहे हैं तो कितना आदमी बोले तो घर द्वार ना है बोट पे घर बनाई के और वहाँ रहे माँ दत इस नीट खुद को मेंशन वो उन बहुत इस दूरदर दान अन है हाँ तो जेके मालूम ना है तो अब हम बताओ थे आप लोग तो यहाँ दनहाक में और कहाँ कहाँ पे जानो हैं कि पानी में घर बना है वही पे सब रहे हैं तो यहाँ बताए गए वो उन बहुतन लेकिन इन मेरे जना है कि खुद कोप है मैं जो घर में हम लोग रहे ला उससे महंगा है वो है पैर फिर कांत मीटर एगो बोर्ड के बताल ये फोर और वो यूएस 20% और ज़्यादा भरिए जो हम लोग घर में रहे ला हमें दल एगो बोर्ड भी कहा है भैया 466,000 यूरो और हमेरल एगो घर भी का है 494,000 यूरो बताल फॉर रेगुलर वोनिंग और बताए गए हैं वोन बोतन सेन इन मिडल 494,000 ग्रोत tegenover 118 vierkante meter boot ik ook gemaakt heen ongeveer 94 vierkante meter heen en ik ook ghar heen ongeveer 118 vierkante meter te bole oosje dekhiye te botia aur mahanga pare hai 20% meer vierkante meter bij een gewone woning ligt de prijs op bijna 7,500 1 vierkante meter to kiniye तो बताए गए दोस्तों आल वोन बोतन जो 2025 में रहा हूफ्टाद में verkocht laag in de hoofdstad Groningen, Rotterdam, Haarlem mee zijn er relatief veel verkocht van Arjarabikal Henga, Bollega de Ronde Veen, Wormerland, Weidermeer en mee worden naar verhouding eveneens veel woonweden verkocht mensen. तो कितना आदमी सोचे है कि हम बोटियन में जो घरवा बनल है वो सस्ता है मार आशीषित मेर फिर कांत मीटर इस दात नो ट्यूर्डर में से दन ओ हम जाए तेरी रुसलांद की ओर जनता Opnieuw is een magazijn voor Ruslandse webshop Wilberis door een droneaanval geraakt. Omwille in het magazijn vlakbij de Russische hoofdstad Moskou mee onthoudt een brand die inmiddels is geblust, dat zegt de regionale governor te Rusland met via Oekraïne. Dagen op betek via 620 drones richting Rusland met Tjelgehe, Hamari Janta. En hier betalen Iran bole hey, bole straat van Hormuz. 19 augustus के ये बात 18 augustus के ये न्यूज़ है स्ट्रैट हॉर्मूज
बोले पास ओपन आज फेयास फेयास अमेरिका हम लोग के जितना ऐस्ट है बोले सब देगा तब बोले हम लोग हॉर्मोज खोला हुआ अमेरिका दूसर बात बतिया है ईरान दूसर बात बतिया है ईरान बोले हम लोग खोलप जैसे वही के और हुआ अमेरिका बोले जैसे वो कर है लेकिन अब के कर है दोस्तों ईरान तो यहाँ दूसर बात बोले है ईरान से पार्लियामेंट फोर्स इतर बोले है टॉप ऑन दर हैंडल आ रहे मोहम्मद बखर गालीबास बोले है उस स्पीच में बोले है Hij noemde hij beëindigen van de Amerikaanse zeeblokkade, het opheffen van de sancties op olie en vrijgeven van de Iraanse tegoeden in het buitenland. Want tegoeden in Amerika is het buitenland mee frisker deze. Bole tap hamlo jaike kolab, bole pahle hamar, jitra sancties tokale oke kol, sinds de oorlog 1 februari, Amerika, Israël, aanval keren Iran koeper varen er nog nauwelijks schepen doorheen die leidt wereldwijd tot hoge prijzen onder meer voor brandstofmensen bolle in het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran was afgesproken dat de straat van Hormuz weer helemaal open zou gaan maar dat is niet gebeurd dat akkoord is inmiddels verlopen Iran onderhandelt met Oman over een veilige doorgang door de straat van Hormuz maar dat betekent volgens Iran niet direct dat de zeestraat wordt heropend mensen to Iran ijsje bole he en Amerika kuj ijsje bole he Hamas ke oor jai bhaiya Hamas tulon jane heiga terror groep heiga Libanon me Hamas zeg verder te willen met proces richting vredesdeal ze mange vrede kere Iran Israël se Gaza stad me Hamas mange vredesplan kere Gaza me aur bole hega onder leiding je Amerika chahi rahe ke aur bole die steun is vooralsnog niet aur bole hega Skunsun jo Amerikaanse president ke hai heeft hier de voorbije dagen over gesproken met zowel Hamas als Israël woordvoerder Hamas bole hai Hamsis Kuzem bole hai tijdspadden en procedurele stappen die nog ideaal in de teel uitgewerkt zullen moeten werden oorlog hote hai bhaiya tulun jano Pakistan ki or hum jai aur Pakistan mein bhaiya aujon president hua kara premier ha oke jahl man se saban nikaris omdat u bimar hai tulun jane am Imran Khan dreen se fatak yaar ke oke saban pakad ke ban kar le raha nawar khiring aail hai to hospital mein bhaiya bahut bimar hai aur bole hega ho khare Pakistan ke बोले हैगा इमरान खान के बोले 2023 में फस इन veroordeelde इन verschillende zaken onder meer voor fraude partijgenoten Pakistan के Tirik Izam bole familie maken zich zorgen over zijn gezondheid mensen o bole hega u bemar he hooggeruif moet gaan binnen 28 uur naar het ziekenhuis worden overgebracht tot 16 september blijven o bole Khan werd 2022 mee afgezet sindsdien is hij geconfronteerd met meerdere rechtszaken afgelopen december werd hij veroordeeld tot 17 jaar gevangenis voor fraude andere zaken gaan onder meer over massamisbruik en opruiming de oud-premier ontkent alle beschuldigingen en noemt de veroordeling politieke moofies mensen तो आप लोग को हम ये गीत को और सुना देते हैं

तो दोस्तों इसी सॉन्ग से आज के समाचार को हम और समाप्त करते हैं। एक लास्ट ब्रेक थे दोस्तों, फीरन देर तक बूटस हो गया है, फीरन देर तक बूटा मिलल है फ्राख्त वाहन के अप्स को तू कंट्रोलर करे ओ टूरिंग कार्ड के नीलांग के बांचित हुए है रेक्स वांस स्थान सोमार के फीरन देर तक को बूटू लिखे से फ्राख वाहन के और टूरिंग कार्ड के जो मेर वीडियो ब्रुख पे चलाए रहा। Het was de eerste dag dat motoragenten van de politie controleerden op het verbod op zwaar verkeer te handhaven. Over de kippen zei, nam mag ik een zwaar verkeer, ja ik. En ik heb geleid aan motoragenten, sapke pakkelijse bhaiya, bolle ik een touring schaars over de verzwakte brug reden. Als de chauffeur werd betrapt, leiden agenten en een voertuig van de weg af naar inspecteur van Rijkswaters. Staat. Dit schreven met een boete van 500 euro. Ja, hoe direct ligt die he? Toh, hamare dosto, yahan tak tha hamara dis aur vidis ki samachar jo aap lon suna hai. Yahi aasha ummeed se ki aapko hamara समाचार जरूर अच्छा लगा होगा। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आप सबको हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी अदाब और आदाब सलाम नमस्ते। और कुछ फिजी सॉन्ग आज को लोकल फिजी सॉन्ग सुनाएंगे।

था मेरा रंगला और राम किशुन कविता, राम किशुन का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है यारो। हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो क्या होगा, देवी निहा सरस्वत राधे व्रजा, और क्या क्या नाम है इसमें दोस्तों, आओ सुना जाए ये क्या सुनाते हैं।

और दोस्तों जैसे बताए गए आज हम कुछ यानी कि हॉट वन सॉन्ग आप लोग को हम नॉन स्टॉप डीजे रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे।

दोस्तों मुकेश भाई थी मुकेश करोड़ों को करोड़ों का दिल चुराने वाला हार्ट ऑफ मिलियंस और वह माई थी मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में हसरत जयपुरी शैलेंद्र।

लगी जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

पसंद होगा वही गीत जॉनी आपको सुनाएंगे, हमारे यारों सुनाएंगे, हमारे यारों। दोस्तों लवली सॉन्ग बजाना हमारा काम है, हमारा काम है लवली सॉन्ग बजाना।

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी, रोमांटिक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के मूड में है। मूवी के नाम है झनकान फन नहीं खतक और बलमा नहीं खत नहीं खतक का आशा भोसले का सॉन्ग के बाद हम चलते हैं। दिल लगी ना किया करो, दिल लगी ना किया करो।

0: किया करो एवरी ग्रीन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं देखा।

बालमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आज हो गया है फिर से।

और पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का भोजपुरी सॉन्ग है। अब लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे, कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की, ये लड़की क्या है दोस्तों, लड़की दीवानी।

दीवानी नील कमल जिंगा ये सॉन्ग है। तो अगला गीत क्या है दोस्तों, पवन सिंह अस्यल्पा राज का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों पवन सिंह का ये सॉन्ग है जो आप लोग को सुनाए हैं और आगे चलते हैं तमन्ना बतिया। तमन्ना बतिया क्यों?

ही देंगी। बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर करेंगे तब।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753563 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: दिल तुम्हारा।
1: मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयाँ पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी के सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। सुनने वालों, अभी आप सुन रहे थे ओपनिंग सिलेक्शन मेरे हिस्से के प्रोग्राम में। आप बुलाए और मैं ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, हमेशा की तरह जब मैं अपने प्रोग्राम को शुरुआत करती हूँ तो एक भजन से मैं अपने प्रोग्राम को शुरुआत करती है यानी हूँ, और आज की इस हसीन रविवार की सुबह की प्रोग्राम में चलिए ये सुंदर सा भजन हम पेश करते हैं। आप सभी के वास्ते, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, जुबिन नौटियाल जी आपको सुनाने वाले हैं।

ये तो सच है सुनने वालों कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। और मैं क्यों ये कहती हूँ, क्योंकि दुर्गा माँ जो है वो बड़ा दयावान है। एक गीत हम पेश करते हैं उन सभी के वास्ते जो बीमार है या लाचार है, और ख़ास करके भी ये गीत को हम पेश करते हैं सोनी संतु जी के वास्ते जो बीमार है और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। तो चलिए मिलकर ये गीत सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे गिरना नहीं है गिर के, संभलना है जिंदगी, रुकने का नाम मौत है, चलना है जिंदगी। और ये गीत हमने पेश किए है उन सभी के वास्ते जो बीमार है या लाचार है, और ख़ास करके सोनी सांतु जी के वास्ते जो बीमार है और आहिस्ता आहिस्ता भी ठीक हो रहे हैं। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ।

फ्रॉम द मूवी खानदान से हमने पेश किए हैं कल चमन था आज एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। मैं किसे अपना कहूँ आज मेरा कोई नहीं।

दमाइती मुकेश और लता जी मिलकर सुना रहे थे मैं किसे अपना कहूँ आज मेरा कोई नहीं। छलिया है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आके ये पूछे।

फिल्म छलिया से भी आप सुन रहे थे मेरे टूटे हुए दिल से। कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करने वाले हैं सुनने वालों। और गीत का बोल है, छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बस मेरा सलाम।

चलिया मेरा नाम, चलना मेरा काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करने जा रहे हैं, वो भी देवी कारला छांगूर जी के वास्ते, जो सूरीनाम देश के रहने वाली है और उन्हें ये गीत बेहद पसंद है और मेरे प्रोग्राम उनको भी बेहद पसंद है। और ज़रा से मैं बतला दूँ कि ये कारला छांगूर कौन है। ये कारला छांगूर जी अशना छांगूर जी की माँ है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं।

होता है होता है सुनने वालों, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मन मौजी को मुश्किल है समझाना। और ये गीत हमने पेश किए है देवी करला छांगूर जी के वास्ते, जो सूरीनाम देश के रहने वाली है और जिन्हें ये गीत बेहद पसंद है और मेरे प्रोग्राम भी। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। लता जी आपको सुनाने वाले हैं और ये गीत हम पेश करते हैं स्वर्गीय रोशनी राधा किशुन जी के नाम पर, उनकी याद में, क्योंकि उन्हें ये गीत बेहद पसंद थी।

तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। और ये गीत हमने पेश किया है स्वर्गीय रोशनी राधा किशन जी की याद में। अय्या सुकु सुकु

या सुकू सुकू अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर मैदली हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते। बताएंगे नहीं कि कौन सा मैदली है, चलिए मिलकर सुनते हैं।

जो हम इस गीत में ढूंढते थे सुनने वालों, वो तो नहीं मिला, लेकिन जब मिलेगा तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। ए गुलबदन मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी प्रोफेसर।

0: गुलबदन ऐ गुलबदन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, सुनने वालों प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं और एक बहुत से सुंदर गीत हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
2: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
2: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

तेजाब है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हमने पेश किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। नमक हलाल है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जवानी जानी मन।

आशा भोसले जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी नमक हलाल। कसम पैरा करने वाली है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं झूम झूम झूम बाबा।

अभी आप सुन रहे थे झूम झूम झूम बाबा, और झूम झूम झूम बाबा के बाद हम पेश करते हैं क्या, आप खुद सुन लीजिएगा।

द टाइटल फ्रॉम द मूवी डिस्को डांसर से हमने पेश किया है सुनने वालों। कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं। जरा सा हम देखे जुम्मा चुम्मा दे दे। आज तो जुम्मे का दिन नहीं है, लेकिन अगर आप चुम्मा देना चाहते हैं तो ज़रूर दे दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े।

जुम्मा चुम्मा दे दे, और जुम्मा चुम्मा दे दे के बाद हम पेश करते हैं दे दे। क्या दे दे बताऊं? नहीं बताऊंगी।

बैंड वाले भाई साहब एक मिनट, क्या है कि हमारी मीना यहाँ कहीं ऊपर रहती है, हमें उसका पता मालूम नहीं। आप थोड़ा बाजा बजाएंगे, हैं पैसे बाद में। 1 2 3 4

दे दे प्यार दे अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। शान है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से द टाइटल आप सुनेंगे।

जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से और मरते हैं भी शान से। ये तो सच है सुनने वालों। इसी फिल्म से एक और गीत हो जाए।

दे यार।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारी प्यार भरी राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज। हैव अ नाइस वीकेंड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Till next time.

आप सुन रहे थे शीघ्र होता है जब कयामत का। अदवाइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी माई लव से हमने पेश किए हैं रुक जा ऐ हवा। लता जी आपको सुनाने वाले हैं ये सुंदर सा गीत, आप सभी के वास्ते हम पेश करते हैं। फ्रॉम द मूवी शागिर्द से आप सुनेंगे

0: अभी आप सुन रहे थे रुक जा ए हवा, हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल ही साफ नहीं तो चमकते चेहरे का कोई फायदा नहीं। फ्रॉम द मूवी आरसू से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं और गीत का बोल है ए नर्क इसे मस्ताना।
1: ए नर्क

अभी आप सुन रहे थे ए लड़की से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। एक बहुत सा सुंदर सॉन्ग हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और लता जी आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है और सब्र जीना सिखाता है।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, सरा बोझ तो ख्वाहिशों का है। मैंने देखा तूने देखा फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मैंने देखा तूने देखा, लता जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हमने पेश किए हैं। कोशिश करना कि जिंदगी में वो शख्स आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले, जो आपको रोज आईने में दिखाई देता है। कान में झुमका, चाल में झुमका, फ्रॉम द मूवी सावन भादो से हम पेश करते हैं। मोहम्मद रफी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे कान में झुमका, चाल में ठुमका, लगे पशासी झटके। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं सर आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, फ्रॉम द मूवी झुक गया आसमां से हम पेश करते हैं।

0: दिए।
1: अभी आप सुन रहे थे झुक गया आसमां से, कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोल सितमगर मान भी जाओ। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। हाँ, मैंने भी प्यार किया मुकेश जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं। लोग हमारी कदर उस वक्त नहीं करते जब हम अकेले हो, बल्कि उस वक्त करते हैं जब वो अकेले हो।

फ्रॉम द मूवी बुन जो बन गए मोती, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफी जी और सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम और आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और मंजिल इंसान के हौसले आजमाती हैं, मंजिल इंसान की हौसले आजमाती हैं। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे दोस्त, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आप यहाँ आए किस लिए? किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं साथ में आशा जी के साथ।

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए।

अपना बना लो।

0: किस लिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: अभी आप सुन रहे थे आप यहाँ आए किस लिए, आशा जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। सुंजा आ ठंडी हवा, थमजा ए काली घटा आप सुनेंगे। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ लोग खुद टूट जाते हैं दूसरों की खुशी के लिए।

किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले थे सुंजा आ ठंडी हवा फ्रॉम द मूवी हाथी मेरे साथी से हमने पेश किए हैं। कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा। चलिए मिलकर सुनते हैं।

खाली जाम लिए बैठा हूँ, कब से इस मैखाने में।

कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा फ्रॉम द मूवी शराबी से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। हमने जफाना सीखी फ्रॉम द मूवी जिंदगी से हम पेश करते हैं।

मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी जिंदगी से हमने पेश किए हैं हमने जफा नसीखी जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा।

तमन्ना है बर्बाद हो जावे। आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी इंतकाम, से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी भरोसा, से हम पेश करते हैं

वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। गुरुदत्त की आवाज़, यानी क्षमा करना सुनने वालों, लता जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी भरोसा से हमने पेश किए हैं बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले, फ्रॉम द मूवी रूप तेरा मस्ताना। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ये सॉन्ग।

बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी रूप तेरा मस्ताना। झुक गया आसमां इसी फिल्म से हम पेश करते हैं कहाँ चल दिए इधर तो आओ।

0: चल दिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कहाँ चल दिए, इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ। फ्रॉम द मूवी झुक गया आसमान से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो रे। फ्रॉम द मूवी तेरे घर के सामने।

घर के सामने है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं दिल का भंवर करे पुकार, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शांता खेमई जी के वास्ते जो हमारे साथी कर्मचारीगण हैं और हमारे प्रोग्राम को भी सुन रहे हैं।

पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया। फ्रॉम द मूवी जिंदगी से हमने पेश किए हैं। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया।

लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, फ्रॉम द मूवी बेनाम से हमने पेश किए हैं। तू हुस्न है, मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, महेंद्र कपूर जी के साथ में आशा भोसले जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं।

मैं तुझ में हूँ अभी आप सुन रहे थे। महेंद्र कपूर जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे हम तुम्हारे लिए। लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी इंतकाम से।

हमारे लिए तुम हमारे लिए अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, और गीत का बोल है आज कल में ढल गया। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बेटी बेटे से।

0: आजकल में ढल गया। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों मोहम्मद रफी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी बेटी। बेटे से हमने पेश किए हैं जाने कहाँ गए दो वो दिन फ्रॉम द मूवी मेरा नाम जोकर से आप सुनेंगे।
1: बजाओ फिर

जीना यहाँ मरना यहाँ भी आप सुन रहे थे और जाने कहाँ गए वो दिन फ्रॉम द मूवी मेरा नाम जोकर से हमने पेश किया है। सुनने वालों, भरी दुनिया में आखिर दिल मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दो बदन से।

भरी दुनिया में आखिर दिल, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। एक बहुत सा सुंदर गीत हम आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। फ्रॉम द मूवी दो बदन से आप सुनेंगे, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा।

सागर डिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा। भी आप सुन रहे थे सुनने वालों फ्रॉम द मूवी दो बदन से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफ़ी आपको सुनाने वाले थे। जबकि बारिश का मौसम है तो इस बारिश के मौसम में हम पेश करते हैं ये सॉन्ग आप सभी के वास्ते रफ़ी जी के साथ में। लता जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है।

रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है। ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं एक हंसी ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। कभी खो लिया कभी पा लिया, कभी रो लिया कभी गा लिया। कहीं रहमतों की है बारिशें, कहीं तिश्नगी बेहिसाब है। कहीं छाँव है कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है। कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं मेहरबान बेहिसाब है। ये ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई।

छुप गए सारे नज़ारे और क्या बात हो गई। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहाँ से लाऊं, मैं मांगता हूँ हर सफ़र में साथ तेरा, तू ही बता मेरे हाथों में वो तकदीर, यानी तू ही बता मेरे हाथों में वो लकीर कहाँ से लाऊं। शांता खेमाई जी जो हमारे साथ एक कर्मचारीगण भी है, वो भी ये प्रोग्राम को सुन रही है, तो शांता लीजिए आप ही के नाम ये सॉन्ग हम पेश करते हैं जबकि बारिश का मौसम है।

0: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, भी आप सुन रहे थे मुकेश जी के साथ में, लता जी आपको सुनाने वाले थे। और ये गीत खास करके हम पेश कर रहे थे अपने साथी कर्मचारीगण शांता खेमाई जी के वास्ते। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों। मिलन है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सावन का महीना पवन करे शोर।
1: Mm-hmm.

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

सावन का महीना पवन करे शोर, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मिलन से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, लोफर है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में आज मौसम बड़ा बेईमान है।

अभी आप सुन रहे थे आज मौसम बड़ा बेईमान है, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी लोफर से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। सुनने वालों, समय हो चला है विज्ञापन का, तो चलिए मिलकर हम

आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। एक काम जो आपको रेडियो के से लेकर आना है, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 7 5 2 8 4 0 या 9 7 3 7 2 0 0 पर आप तार कीजिए। तारकर्ण में मैं दोहराता हूँ, अपन अखेंडा में लिख कर रख लीजिए आज नहीं तो कल के लिए 0 7 5 2 8 4 0 या 0 7 3 7 2 0 0 0। तारकर्ण नंबर है शान। दोस्तों शान एक गायक है, लेकिन शान को एक बैंड का एक ग्रुप अभी है, एक म्यूजिक ग्रुप है दोस्तों, और उसी म्यूजिक ग्रुप के आवाज़ में आप म्यूजिक सुनेंगे और शान के गला से आप ये गीत को सुनेंगे।

शान, मिस्टर शान की मीठी आवाज में अभी आपने सॉन्ग को सुना। फावन हिंदुस्तान दोबारा चुन है दोस्तों उदित नारायण। उदित नारायण आपको फरमाएंगे कि हवाओं ने ये कहा, और जैसे आप सभी को मालूम है कि हवा भी आवाज़ देता है दोस्तों, लेकिन कहता है हवा वो मुझे मालूम नहीं है। आशा रखता हूँ कि आपको ये गीत सुनकर पता लग जाएगा कि हवा कहता है और हवा ने क्या कहा आपको खुद मालूम हो जाएगा। आप खुद सुनिए दिल और जान से।

उदित नारायण, पद्मश्री उदित नारायण के मीठे आवाज में भी आप ये गीत को सुना। दोस्तों, जानू मेरी जान, तू मेरा मैं तेरा, या तू मेरी मैं तेरा, जाने सारा हॉलांत। दोस्तों, ये फिल्म शान का सॉन्ग है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन काम किया है परवीन बाबी के साथ। आप सभी को मालूम है कि दोनों में प्यार मोहब्बत था, फिर भी परवीन बाबी जो है वो डिप्रेसिव हो गया था, और जब डिप्रेसिव हुआ तब कई लोग के बारे में अनबन कहा, और कहा कि भारत की सरकार जो है उन्हें भी फॉर द रेक्टर एग्जाम किया था, उसका मूड खराब हो गया था। सो लेकिन उसी समय पे एक पार्टी पे परवीन बाबी ने गया, और अमिताभ बच्चन उसी समय पर सुपरस्टार चुना गया। तो परवीन बाबी से सवाल किया गया कि आप क्या ये बात से सही है कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार चुना गया? तो परवीन बाबी ने कहा, अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार नहीं है, सुपरस्टार का पद अगर देना है तो धर्मेंद्र को दीजिए, देवानंद को दीजिए, ऋषि कपूर वगैरह का नाम लिया तो उसके तीखा ना अमदद प्यार मोहब्बत अब नहीं था, और डिप्रेसिव हो गया था। ठीक से देखा जाए तो उसको आप भी नाराजी नहीं मान सकते, इस बात पर कोलक नहीं ले सकते हैं, वो नहीं जानते थे वो क्या कहते। फिर भी जो इसके दिल में आया वो कहा, जानू मेरी जान। ये दोनों लॉफर्स दोस्तों, परवीन बाबू बाबी और साथ ही साथ अमिताभ, दोनों का फिल्म शान का सॉन्ग।

फ्रंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: ये सुंदर सा गजल आप सुने और इसे पसंद करें। सभी सुनने वालों के वास्ते खास तौर पर जो इसके गुजारिश किए वो चाय लेकर बैठकर रेडियो के करीब और सुन रहा है, तो पेश है आपके लिए।
1: इस नज़म का टाइटल, इसका उनवान है 21वीं सदी और नज़म के शायर हैं जनाब जफर गोरखपुरी। जफर साहब ने बयान किया है, पहले बंद में हमारे बुजुर्ग यानी हमारे दादा परदादा के वक्त की बातें हैं, दूसरे बंद में हमारे अब्बा हमारे पिता के वक्त की बातें, तीसरे बंद में इस मौजूदा दौर का बयान है, ये मुंबई शहर की ज़िंदगी हर कोई भाग रहा है उसके बारे में शायर ने कहा, और आखिरी जो बंद है उसमें बयान है हमारी आने वाली नस्ल हमारी आने वाली पीढ़ी जिस रास्ते से गुजरेगी किस रास्ते से गुजरेगी उसके बारे में शायर ने कुछ बातें की, अपने ख्याल पेश किए। मुलाहिज़ा फरमाएं।

अच्छे भोले वाले लोग बहुत जल्दी चले गए। उसके बाद हमारे पिता का वक्त आया, जबकि एजुकेशन और एक लफ्ज़ है रवायत, रवायत के माने हैं ट्रेडिशंस, ये हमारी ट्रेडिशंस में कितने सारे बदलाव आए। काबिल गौर ये बंद है, बहुत खूब लिखा है शायर ने।

कछ उदास जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर ली है ये सुंदर सा गजल। आपके गुजारिश हुई ये सुंदर सा गजल पेश किया गया है आपिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए।

अनोखी रात फिल्म का नाम, फिल्म का नाम अनोखी रात। मुकेश जी के साथ में साथियों दे रहे थे संगीत जो हमने यहाँ से श्रवण किए और आपके लिए गुजारिश पे ये सुंदर सा पुराना गीत नसीम बेगम की आवाज में, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले,

सुंदर आवाज में फिल्म का नाम सहेली 1960 की ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है और गीत जो हमने सुंदर आवाज में सुनी है वो हमारे नसीम बेगम जी की आवाज थी और आज भी उनकी आवाज उतनी ही जवान है। तो आपके फरमाइश जो है यहाँ से पेश किया गया है।

ऐसा भी होता है कि आप चल रहे हो, वो चल रहे हो, तो कभी कभी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो खुशी होती है देखते हैं, और ऐसे कोई कोई लोग होते हैं ना, आप समझ गए ना मैं क्या कहने चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि आप बहुत समझदार हो। दम भर जो उधर मुँह फेरे।

0: आवाज में साथ दे रहे थे हमारे मशहूर मुकेश जी की आवाज में कि दम भर उधर मुंह फेरे जो उधर मुंह फेरे फिल्म आवारा से ये सुंदर सा गीत पेश किया गया है सिर्फ सिर्फ सिर्फ आप ही के लिए, क्योंकि आप वो बेस्ट लिसनर है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के।
1: जापनी लेजेंड कहती है, अगर तुम बस मिस कर दो शायद तुम एक एक्सीडेंट से बच गए हो, अगर तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया शायद तुम किसी गलत जगह से बचा लिए गए हो, अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया शायद वो तुम्हारे लिए उस इंसान की जगह बना गया जो आने वाला है। कायनात तुम्हारी हिफाजत उन तरीकों से करती है जो शुरू में बदनसीबी लगते हैं, वो जॉब जो तुम्हें नहीं मिली, वो इंसान जो तुम्हारी जिंदगी से चला गया, वो प्लान जो लास्ट मोमेंट पर टूट गया। तुमने इन सबको बैड लक समझा, तुमने सोचा कि हर चीज तुम्हारे साथ ही क्यों गलत हो रही है, लेकिन शायद कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। शायद ये सब प्रोटेक्शन थी जो तुम उस वक्त देख नहीं पा रहे थे। जब तुम इस नजर से देखना शुरू करते हो सब कुछ बदल जाता है। हर लॉस असल में लॉस नहीं होता, कभी कभी जो चीज सबसे ज्यादा दर्द देती है वही क्वाइटली तुम्हें किसी और बहुत ज्यादा बुरी चीज से बचा रही होती है। इसलिए इस डिटूर पर भरोसा करो, जो चीज तुम्हें टूटने का एहसास दे रही है शायद वही तुम्हें बचाने का तरीका हो। रिजेक्शन हो सकता है रीडायरेक्शन हो, एंड शायद किसी नए स्टार्ट का नाम हो, बस तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा।
0: एक जैप वाकई में एक दिन ये बात हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस वक्त हमारे ऊपर किसी के ऊपर जो गलत होता है या हाँ गलत नेगेटिविटी जो होता है तो हम डर जाते हैं, पर अगले पल जो हम सोचते हैं ना तो सोचते हैं कि ये जो हुआ अच्छा के लिए हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छा के लिए होता है। पर हमारा नजरिया और उस वक्त के जो हमारे ऊपर बीतता है तो हम थोड़ा से जैसे धुंधलापन हो जाता है मन में, नज़र में, दिमाग में, तो हम थोड़ा से नितरा ना सोच पाते हैं। पर जो बीत जाने के बाद तो हम देखते हैं पीछे मुड़ के थोड़ा से तो सोचते हैं कि हाँ अच्छा हुआ। मैं भी कहती हूँ जो जीवन में घटता है वो अच्छे के लिए ही घटता है, पर हम कभी कभी उसे समझ नहीं पाते हैं। पर जब हम समझ लेते हैं तो जान लो आप सिकंदर हो।

वेरी वेरी लवली सॉन्ग लता जी की आवाज में। देखा है तुमने जिधर जिधर मेरी नजर भी वैसी है, उसी फिल्म से ये एक और गीत हम लगा देते हैं। फिल्म का नाम नजराना, निखतिन इनसेस तक की ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। उसी फिल्म से ये सुंदर सा गीत आपके

0: लता जी की भी यहाँ शामिल कर लिया गया है।
1: किसी भी इंसान से शादी कर लो, एक ना एक दिन जिंदगी में ये जरूर कहोगे कि मैंने कैसे इंसान से शादी कर ली। लेकिन मसला गलत इंसान चुनने में नहीं होता, असल मसला ये होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जिसके पास पैसा होता है उसके पास वक्त नहीं होता, जिसके पास वक्त होता है उसके पास पैसा नहीं होता, जो रोमांटिक होता है उस पर भरोसा नहीं होता, जो लॉयल होता है वो बोरिंग लगता है, जो हमेशा सच बोलता है उसकी बातें कड़वी लगती हैं, जो हर वक्त अवेलेबल होता है उसकी कदर नहीं होती, जो अट्रैक्टिव होता है वो लॉयल नहीं होता। तो अगर तुम एक परफेक्ट इंसान का इंतजार कर रहे हो तो शायद पूरी जिंदगी वेट ही करते रह जाओगे। लेकिन अगर तुम एक सच्चे नामुकम्मल मगर मजबूत रिश्ते के लिए तैयार हो तो तुम्हें वही प्यार मिलेगा जो कभी चमकता नहीं मगर कभी मरता भी नहीं।
0: मैं सोच रही हूँ ये संदेशा जो हमको मिला है इससे आप और मैं जरूर से कुछ सीख ले ली होगी, क्योंकि हम परफेक्ट चीज जो उगोरेंगे, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट वक्त, परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट सज्जन के सज्जन या सजनी को, तो वो परफेक्ट तो हमको मिलेगा ही नहीं। पर ऐसा करो, समय जो परफेक्ट नहीं है तो उसे कोशिश करो कि परफेक्ट अपने मन में जो बना ले तो वो भी नजरिया से परफेक्ट दिखेगा। और आप वो चीज ना खोजना जो आप में नहीं है। हम परफेक्ट नहीं है, आप परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्टता जो है उसे भी मत खोजो। सुलह करो साथ में जो है, मिलजुल के कम्युनिकेशन करके, समझ बूझ कर और आगे बढ़ते चलो।

मेरे दोस्तों, वही फिल्म से, फिल्म नजराना से। और इस बार हमने सुने हैं मोहम्मद रफी जी की आवाज में कि बाजी किसी ने प्यार की तो कोई जीती तो कोई हार दी। ये आपके गुजारिश हुई गीत यहाँ से मैं चला रही हूँ। अगर आप भी सुनते हो, आप भी चाहते हो कुछ गीत सुनने के लिए, तो झिझको मत, डरो मत, बस तार ही घुमा दो 0703622077 पर। इस बार आपके लिए

हाँ मेरा सुंदर सपना और बीत गया, मेरी तो नहीं बीती, मेरे ख्याल से आपका भी नहीं बीती है। ये गीत के अनुसार है, कोई दुखी परिवार हो, कोई जीवन साथी छूट गया है, तो ऐसा गीत तो दिल छू जाता है ना मेरे दोस्तों। फिर भी जिंदगी वहीं पर नहीं रुकता है, जिंदगी तो जब तक हम जीवित है जीवन चलता ही रहता है।

मुकेश जी के आवाज पे ये दर्द भरी बयान आपके लिए पेश किया गया है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। इस वक्त के लिए मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको

बहुत अच्छा लाइन है, आप जरूर सुने, इसे पसंद करेंगे कि कभी तो की होगी सूरज ने, कभी तो की होगी सूरज ने चांद से मोहब्बत। सुनिए जी, कभी तो की होगी सूरज ने चांद से मोहब्बत, तभी तो चांद में दाग है।

राग है। ये लाइन भी आप सुने, इसे आप भी खुश हो जाएंगे कि दिल में रह कर कि दिल में रह कर दिल पर वार करते हो, दिल में रह कर दिल को पर वार करते हो, जानते हो कि उसमें तुम्हारा ही बसेरा है, कि दिल में तुम्हारा ही बसेरा है, फिर क्यों अपने घर को वीरान करते हो, क्यों

शैतान। फिल्म साधु और शैतान से सुने हमने ये सुंदर सा गीत महमूद के एक्ट की हुई है। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, सुनिए तो जी कि आंसू

पर सुझा लेना। बाद में मौका मिले या ना मिले, बस दिल पे ना लगा लेना, दिल पे ना लगा लेना। यहाँ से आपके लिए चुन कर रखी हूँ और आपको लेकर चलते हैं आशा भोसले जी की आवाज़ में, रातों का राजा फिल्म से निकालेंगे।

कि बात इश्क में क्या खुद के लिए जीना आता है।

एक बार फिर आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है आज के प्रोग्राम में, इस पल के प्रोग्राम में। खामोशी से मतलब नहीं बातों से है मेरे दोस्त। दिन तो गुजर ही जाएगा, मसला रातों का है। पल ये समय आपको बहुत सारे बधाइयां दे रहे हैं।

0: Julia.
1: Dinner at 8?
0: Nah, not tonight, darling. Michael?
2: Yeah,

यही तो बात है, कल हो ना हो आज तो है, ये पल तो है, इसे में इसी के एक अच्छा यादगार बना लो। मौका इसी पल में है। कल हो ना हो टाइटल सॉन्ग से हमने सुने सोनू निगम जी की आवाज में, रोज सुन सकते हैं इतना मधुर आवाज में, और इसमें कितना मतलब है।

स्पेशल स्पेशल सॉन्ग्स आपके लिए चुनकर और लाई हूँ आज के वक्त में। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से हम सब जुड़े हैं। स्पेशल

इसे जीने के लिए सिर्फ दो ही उसूल बना लो। हाँ, सिर्फ दो, रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। जिंदगी के हम सफर में, जिंदगी के हम सफर में हो तो बात पे यकीन तो नहीं था, पर तुम आए तो यकीन हुआ। और सफर जो है मोहब्बत ही से भर गया है।

कलम दिल चाहता से सुने हम शेखर महादेवन शान और के की आवाज में कि दिल जो भी कहे परवा नहीं, हम तो अपना राह सीधे चल रहे हैं। इन लीफन हु द्रक यहत ओक है मैन लीफ मेंस भाइयों बहनों इन लेफन हु द्रक यहत ओक है नेम द तैत ओम मैच दीर बारन त प्रातन वा दू ये अंदर्स में दि तैत अस दर नीत मेर सें। अच्छा समय अच्छा गीत आपके लिए हमारे अच्छे अच्छे लोग जो सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। दुनिया के जिस गली में आप जहां भी जैसे भी हो आपका इंटरनेट है तो आप वर्ल्ड वाइड सुन सकते हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

के घुंघरू टूट गए इसी वक्त, वैसे मैं यहाँ सोचकर और सोचते रहते कि घुंघरू कैसे ही टूट गए पता नहीं। मेरे दोस्त कहते हैं कि जैसे सोचोगे वैसा ही बनोगे। विचार ही आपकी पहचान है मेरे दोस्त, विचार ही आपके पहचान है।

फिल्म वॉर से निकाल दिया है जय जय शिव शंकर। सीटी भी बजा दी है। लेर तफर्तरावन द हेल वेरल्ड ट्वाइफल्ड।